मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948, वैशाख मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारे प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

0: प्रयास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतार कर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजतरेताली संझार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलोमेवो को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोफ को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के समय यदि प्रभु का स्मरण किया जाए तो इसका असर पूरे दिन और पूरी जिंदगी पर पड़ता है। तो आइए करते हैं प्रभु को याद हमारे भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना के माध्यम से।

भक्ति भौतिक सुखों के लिए नहीं, अभी तो आध्यात्मिक सुखों के लिए होनी चाहिए। सुख का साधन प्राप्त किया जा सकता है, किंतु सुख नहीं। यह निर्णय हर व्यक्ति को स्वयं ही लेना पड़ता है कि वो किस ओर

भक्ति का मौलिक सूत्र यही है कि हमारी पुकार परमात्मा को ले आती है। एक बार हृदय से पुकारो तो आसन, योग, श्रवण, मनन किसी की जरूरत नहीं। केवल भाव करो, प्रेम से पुकारो तो ईश्वर जरूर आता है।

मीडियम वेव 266.66 मीटर पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब आपको जानकारी देते हैं आज के कार्यक्रमों की कि आज हमारे केंद्र से आप क्या क्या कार्यक्रम सुनने वाले हैं। तो कुछ ही पलों में आप सुनेंगे श्री रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित श्री रामचरित मानस गान। 7 बजे आप सुनेंगे सदाबहार नगमे और 6:50 पर सुनिए खेती में आज। इस मई के महीने में किसान क्या कार्यक्रम करें इसकी जानकारी हम देंगे। 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत और 8:30 पर कार्यक्रम होगा नमस्कार उदयपुर का।

हमारे मीडियम वेव चैनल पर सुबह 11:10 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

हमारी बहनें सुनेंगी कार्यक्रम महिला जैकेट दोपहर 1:05 पर, जिसमें थीम होगी नए स्टार्टअप की कहानी पर आधारित। जरा सोचिए का विषय रहेगा राशन के डिब्बे से लेकर डिजिटल लेन देन तक, नारी आर्थिक सशक्तिकरण। बातचीत का विषय रहेगा टेक्नोलॉजी में महिलाएं, और चर्चा का विषय रहेगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जयंती पर, और आसिफ अली के बारे में जानकारी देंगे, और जयंती आज के कृष्णमूर्ति की भी है। कामकाज की बातों में हमारी बहनें सुनेंगी घरेलू आदतें, वाईफाई युक्त घरेलू उपकरण की बढ़ती मांग।

कृषि कार्यक्रम होगा दोपहर 2:30 पर, जिसमें किसान भाई सुनेंगे किसान रिवाता, अत्यधिक गर्मी से फसल का प्रबंधन और इसके अलावा जानकारी देंगे खेत में जल भराव से बचाव की, और इसके अलावा श्रोता सुनेंगे राजस्थानी लोकगीत। हमारे युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी शाम 5:00, जिसमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देंगे और ऐतिहासिक स्थान के बारे में भी जानकारी देंगे, सरदारी लाल नंदा के बारे में भी जानकारी देंगे। और इसके अलावा आप सुनेंगे फिल्म संगीत शाम 6:05 पर। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित श्री रामचरित मानस गान।

अगवानी करने वालों को अयोध्या से आई बारात जब जनकपुर के निकट दिखाई दी तो हृदय में उमड़ते आनंद से उनके शरीर रोमांचित हो उठे। धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। राजा जनक ने बारातियों के लिए दूध, ठंडे शरबत, जल आदि तथा भांति भांति के पकवानों से सजे थाल परात भिजवाए। वस्त्राभूषणों तथा बहुमूल्य मणिमाणिकों से लदे पशु पक्षी घोड़े हाथी भी भिजवाए गए। अगवानी करने वाले और बाराती नगर के बाहर इस प्रकार मिल रहे हैं मानो आनंद के दो सागरों का मिलन हो रहा हो। देव सुंदरियां फूलों की वर्षा करती हुई मंगलाचार कर रही हैं। देवता आनंदमग्न होकर नगाड़े बजा रहे हैं। बारात को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सभी सुविधाओं वाले

वासे ले जाया गया। बारात के जनकपुर पहुंचने का संवाद सुनकर अंतपुर में सीता जी ने मन ही मन सभी सिद्धियों का स्मरण किया और उन्हें बारात के स्वागत सत्कार के लिए भेजा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब हमारे किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम खेती में आज।

खेती में आज कार्यक्रम सुनवा वाला सकला किसान भाया ने नीता कोठारी रो राम राम। किसान भाया आज बात करांगा आणी महीना आपाने खेती बाड़ी रा कसा कसा काम करना है। जी किसान भाई सागबाजी री खेती कर रहा है वी कद्दू वर्गीय फसलां जिस तरह की लौकी कद्दू तोरई काशीफल काकड़ी तरबूज और खरबूजा अणा सब री वावणी मार्च और अप्रैल में वेई चुकी है। अणी टेम पे हरी फसल कम वेवे अणी वास्ते कीड़ा रो प्रकोप बढ़ जावे अने नियंत्रण रो विशेष ध्यान किसान भाई आपाने राखणो है। एक दान पौध अवस्था पे फसल स्वस्थ रहे तो आगे भी देखो हव उपज मिलवारी पूरी संभावना रहे। पाणतरी बात करा तो सामान्य पाणत आपने गर्मिया में खासकर मई में 5-8 दना रे अंतराल पे आपने करता रहना चाहे। कीट प्रबंधन रे वास्ते फल माखी और लाल कद्दू कीट खास वे अंडे नियंत्रण रे वास्ते कार्बेरिल 50 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाने छिड़काव कर देनो है और फल माखी ने नियंत्रण रे वास्ते कार्बोरिल 2 ग्राम प्रति लीटर री दर छिड़काव कर देनो चावे। ध्यान यो राखनो है किसान भाया की कीटनाशी रो छिड़काव फला रे टूटवारे केड़े आपाने करनो है। रोग प्रबंधन री बात करा तो मृदु रोमी लासिता चूर्णी लासिता और जड़ विकलन फफूंदी फेलवा वाला ई सब रोग है। अंडी रोकथाम रे वास्ते रोगग्रस्त फसल अवशेषा ने कार ने नष्ट कर देनो है। मृदु रोमी लासिता रे वास्ते मेनकोजेब 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाई ने छिड़काव करनो चावे। कद्दू वर्गीय फसलारी बात करा तो उनमें बुकानी रोग रे नियंत्रण रे वास्ते केराथेन 1 लीटर या पचे 3 किलोग्राम घुलनशील गंधक प्रति हेक्टर दरू 1000 लीटर पानी में घोल बनाई ने छिड़काव कर देनो चावे। रींगणारी बात करा किसान भाया तो घोल आकार रा जो रींगणा है वंडी उन्नत प्रजातियां जिसरे की पूसा संकर 6, पूसा संकर 9, पूसा उत्तम, पूसा उपकार और लंबा

आकार रिंगणारे वास्ते उन्नत प्रजातियां हैं, पूसा संकर 5, पूसा संकर 20, पूसा श्यामला, पूसा कौशल और पूसा क्रांति। गोल और छोटा आकार रे बेंगल नी उन्नत प्रजातियां हैं, पूसा अंकुर और पूसा बिंदु। ई सब खास है अणारी बावणी किसान भाई आपा कर सका। और हाउ जमाम क्षमता वाला जो 400 ग्राम 250 300 ग्राम संकर किस्मारा बीज प्रति हेक्टर हिसाब आपने ले लेना चाहे। भिंडी री बात करा तो भिंडी री वावणी फरवरी मार्च में वे जावे। अणी टेम पे या फसल देखो पुष्पण और फली विकास अवस्था में वेवे। अणी टेम पे पाणच जो है 10-12 दिनारे अंतराल पे आपा कर सका। रोग प्रबंधन री बात करा तो भिंडी री फसल में लागवा वाला मोजेक और पर्ण कुंचन रोग, धोली माखियों फैले, मोजेक में पत्या पे छोटा छोटा पीला रंगरा चितकबरा धब्बा बन जावे, पत्यारी शीरारो रंग पीलो पड़ जावे और लीफ कर्ल पत्यारो हरो भाग जो है छिछला गड्ढारे रूप में ले लेवे। अन्य नियंत्रण रे वास्ते एसिटामाइप्रिट 3 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी या पछे कॉल्फिडोर 200 SL 0.3-0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी री दणु आपणे वावणी रे 20 दिनारे अंतराल पे जरूरत रे अनुसार 15 दिनारे अंतराल पे उपयोग कर लेनो चावे। स्पाइरोमेसिफेन दवाई रो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाईने दूसरो छिड़काव किसान भाया कर दांगा तो अणी तरह जो है भिंडी में रोग प्रबंधन वे सकेगा। कीट नियंत्रण रिवाज कला तो फली और तना छेदक कीट फलिया में छेद करने महीने बीजा ने हानि पहुंचावे। फली खावा योग्य नहीं रहे। अंडे वास्ते देखो पौधारी अंतिम कोमल जो शाखा है वन में छेद कर देवे। अणी पौधा रो ऊपरी हिस्सो मुरझाई जावे। और अणी कीट नियंत्रण रे वास्ते इमामेक्टिन बेंजोएट 2 ग्राम प्रति 10 लीटर या पछे स्पिनोसेड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलने छिड़काव कर देना। और अंडा परजीवी ट्राइकोग्रामा री 50,000 कार्ड री मदद खेत में छोड़वा जो है अणी कीटारो प्रकोप जो है वो काफी कम भे जावे। भिंडी री पत्तिया ने काटवा वाला जो कीड़ा है भी नष्ट करवारे वास्ते साइपरमेथ्रिन 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाई ने 15 दिनारे अंतराल पे आपने छिड़काव कर देना चाहे ताकि कीड़ा पे नियंत्रण वे सके। अदरक री बात करा किसान भाया तो अदरक री वावणी रे वास्ते 16-18 क्विंटल प्रकंदर प्रति हेक्टर री जरूरत वेगा। अदरक री बुवाई 30x20 सेंटीमीटर री दूरी पे और 4 सेंटीमीटर री गहराई पे करनी चाहे। और वावणी पहला अदरक रे जो 20-25 ग्राम टुकड़ा है वना ने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड रे 0.3% रे गोल में 10% तक उपचारित करना चाहे। किस्मारे चयन री बात करा तो अदरक री प्रजाति जिसरे की सुप्रभा, सुरभि, सुरुचि और हिमगिरी ई सब उन्नत प्रजातियां हैं। अदरक रे वास्ते खेतरी तैयारी रे टेम पे 75 क्विंटल नाडेप खाद या पचे 200-250 क्विंटल सड़ी गोबर री खाद रे लारे 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटास वावणी रे पहली अंतिम जुताई रे टेम पे प्रति हेक्टर री दर मिट्टी में मिलाई देनो चावे। अदरक हल्दी और सुरन री वावणी करवारे केड़े खेत ने सूखी पुआल या पचे घास फूस या पचे सूखी पत्तियां ढाक देनो चावे। अणी कई वेगा खेत में नमी वनी तकी रहेगा और अंकुरण भी हो वे सकेगा। और अणी महीना देखो सूरन री वावनी रो काम भी आपने किसान भाया पूरो कर लेनो है। हल्दी री बात करा तो हल्दी रे वास्ते देखो 15-20 क्विंटल प्रकंदा रे प्रति हेक्टेयर वावनी रे वास्ते जरूरत वेगा। हल्दी री वावनी 40x20 सेंटीमीटर री दूरी पे 4 सेंटीमीटर री गहराई पे आपने करनी है। वावनी पहला हल्दी रा जो 20-25 ग्राम रा टुकड़ा है वना ने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% रे गोल में उपचारित कर देनो और वटा केड़े आपने वावनी करनी है। किस्मारी बात करा हल्दी रे तो हल्दी री प्रजाति में कृष्णा, राजेंद्र, अमलापुरम और मधुकर ई सब हाउ किस्मा है किसान भाया। अंडो चयन करने आप हल्दी री वावनी कर सको। पोषक तत्व प्रबंधन री बात करा तो हल्दी रे वास्ते खेत री तैयारी रे टेम पे 75 क्विंटल नाडेप खाद या बचे 200-250 क्विंटल सड़ी गोबर री खाद रे लारे 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास वावणी रे पहला अंतिम जुताई रे टेम पे प्रति हेक्टर री दर मिट्टी में मिलाई देनो जावे अणि फसल हाउ मिल सकेगा। मूली री बात करा किसान भाया तो मूली री किस्म पूसा चेत की गर्मी रे मौसम रे वास्ते हाउ है और 45-50 देना में या तैयार बेचावे। अंडी वावणी अप्रैल अगस्त तक आपा कर सका। रींगणा री मई जून माह री बीज री वावणी और जून मध्य जुलाई रे बच्चे रोपाई करी जावे। वावणी रे केड़े नर्सरी बेड ने पुआल घास ढाकने राखनो चावे अणि बीज अंकुरण में वृद्धि वेगा। किसान भाया नर्सरी में बीज वावणी रे तुरंत केड़े हजारारी सिंचाई कर देनी चावे।

मई माह रे दूसरे सप्ताह में मरचा रही नर्सरी लगाई सका आपा और 400 ग्राम बीज एक एकड़ खेत में पौध रोपण रे वास्ते काफी रेवे। उन्नत प्रजाति री बात करा तो पूसा सदाबहार, पूसा ज्वाला 80-100 क्विंटल हरी मरचा देवे। रोग री रोकथाम रे वास्ते 400 ग्राम बीज ने 1 ग्राम केप्टोन या पचे थीरम उपचारित कर लेनो चावे। पोषक तत्व प्रबंधन री बात करा तो खेत री तैयारी रे टेम पे 25 टन प्रति हेक्टेयर री दरू हाउ सड़ी तकी गोबर री खाद या पचे कंपोस्ट री खाद मिट्टी में मिलाई देनो चावे। रोपयू पेला लगभग 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास और नाइट्रोजन री आधी मात्रा अंतिम जुटाई रे टेम पे मिट्टी में मिलाई देने चावे। बची तकी जा आधी नाइट्रोजन री मात्रा एवं फूल आवारी टेम पे आपा उपयोग कर सका। खरपतवार नियंत्रण री बात करा तो पेंडी मिथेलिन 3 लीटर प्रति हेक्टेयर री दरू पौधा री रोपाई रे पेली प्रयोग कर लेनो चावे। अणी मात्रो ध्यान राखनो चावे कि छिड़काव पेली जमीन में नमी वेनी चावे। निरई गुड़ई खेत में खरपतवार नियंत्रण करनो संभव रहे। रोपाई रे पेली पौधारी जड़ा ने कॉल्फिडोर कीटनाशी 1 लीटर पानी में गोल बनाई उपचारित कर लेनो चावे। किसान भाया मार्च में रोपया तका टामेटा, मरचा और रींगणा में जरूरत रे अनुसार पाणत्रो काम आपणे करता रहनो है। टामेटा और मरचा में 35 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर रे दरू रोपाई रे लगभग 4550 दना रे केड़े आपणे दूसरी ट्रॉप ड्रेसिंग कर लेनी है। तो अणी तरीका अगर आपा काम करांगा तो साग भाजी री फसला जो है भी हाउ तरीका वेगा, पैदावार भी हाउ मिले सकेगा और मुनाफो भी वत्तो मिलेगा। अबे माने कार्यक्रम रो टेम भी पूरो व्यो तो चालना सा। राम राम सा।

90 हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के ठीक 7 बजे हैं। अब आपका मनोरंजन करवाते हैं फिल्म संगीत के साथ।

मिलन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी। अगला गीत फिल्म दो रास्ते से, आवाज लता मंगेशकर की।

0: दो रास्ते फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और अब हम आपको सुनवा रहे हैं मनचली फिल्म का गीत आवाज किशोर कुमार की।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी।
2: एक बहाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा।

0: देखो देखो देखो टूटना चूड़ी नहीं है मेरा, चूड़ी नहीं है मेरा।
1: गैम्बलर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अगला गीत हमने आपके लिए चुना है फिल्म अभिनेत्री से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें।
2: हंसो मत, बोलो

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में फकीरा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। अगला गीत हमने आपके लिए चुना है फिल्म मेरा गांव मेरा देश से, आवाज लता मंगेशकर की।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। आइए सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म का आन मिलो सजना फिल्म का गीत।

0: बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का।
1: मुकेश के गाए फिल्म संगम के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब आपके लिए लेकर हाजिर हैं सुगम संगीत, ये पहली गजल आपके नवाज।

सुगम संगीत बस यहीं तक। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर सुनिए मॉर्निंग न्यूज़।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे, वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीर जी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
2: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री सरमा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
6: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों

0: विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
1: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
2: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
3: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंगो पोकांगवा, मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा।
1: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0112301 0112371717 और 0112371706। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है 1 साल सोना नहीं खरीदे, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार। टीवीके प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ।

0: वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चार धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेस सिटीजन्स नॉट टू बाय गोल्ड फॉर अ ईयर, रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन एंड कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज अमिड वेस्ट एशिया क्राइसिस। Prime Minister Modi to participate in Somnath Amrit Parv in Gujarat today to also inaugurate Sardar Dham Hostel in Vadodara. Assam Governor invites Hemant Biswa Sarma to form new government in the state. Uttarakhand administration urges Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain alert and travel safely amid adverse weather conditions. US President Donald Trump rejects Iranian response to USP's proposal as totally unacceptable. And in football, India to take on host China in crucial quarter-final match in AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens not to buy gold for a year, reduce fuel consumption and conserve foreign exchange amid the West Asia crisis. Addressing a gathering in Hyderabad, Mr. Modi called for revival of work-from-home practices. The remarks come against the backdrop of record-high fuel prices in many nations. The Prime Minister's appeal come at a time when global crude oil prices have surged due to escalating tensions in West Asia and disruptions around the Strait of Hormuz.
1: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देशहित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
0: The Prime Minister also appealed to

0: ज़िंदगी जीने का कुछ ऐसा सलीका सीखो कि छोटे छोटे पलों में खुश रहने का तरीका सीखो। कांटों भरी राहों में भी फूलों की तरह खिलना सीखो। कब तक डरोगे इन ठोकरों से, गिरकर फिर से संभलना सीखो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम के साथ हाजिर हूँ मैं अनीता, और मेरे साथ हैं,
1: मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त बीना।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: और साथ ही हम अपने श्रोताओं को बता दें बीना कि आज फिट लाइफ सोमवार में क्या है खास।
1: बिल्कुल, आज का फिट लाइफ सोमवार बहुत सारी चीज़ों से भरा पड़ा है। तो टुडे एट ग्लांस, यानी आज एक नज़र डालें, तो सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में। आसपास की खबरों को हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। और आज दो शख्सियतों की जयंती है, आसिफ अली और जय कृष्णमूर्ति, इनकी बातें होंगी। और आईपीएल अपडेट हम हमारे श्रोताओं को देंगे। और हेल्दी हैबिट हमारा जो सेगमेंट है, आज का विषय रहेगा बच्चों में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स।
0: बिल्कुल, और शहर की हलचल में हम बात करेंगे उदयपुर शहर में चलने वाली रेलगाड़ियों की। और आज हम अपने श्रोताओं को हमसे जुड़ने का मौका भी देंगे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। उन्हें हमें बताना होगा कि आज इस कार्यक्रम ने हमने जो भी जानकारियां दी वो उनको कैसी लगी, या आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम के बारे में अपनी राय देना चाहते हैं तो कीजिए हमें मैसेज 9462697568 पर। हम आपके मैसेज पढ़कर सुनाएंगे 9:10 पर।

0: तो जी अब सबसे पहले आज की खबरों की तरफ नज़र डाल देते हैं। तो अनीता, आज जैसे कि हम बात भी करेंगे थोड़ी देर बाद कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, तो इस दिन एक बड़ी खूबसूरत सी खबर हमको मिली है कि शहर के शिल्पग्राम के पीछे अरावली की तलहटी में करीब 30 करोड़ की लागत से उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र सब रीजनल साइंस सेंटर एक आकार ले चुका है। 6.4 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैले इस सेंटर का पहला चरण पूरा हो गया है और ये आने वाले 3-4 महीनों में आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसकी जो बात खूबसूरत सी जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि एक तो ये आइडिया लैब उपलब्ध कराएगा, सन एंड फन गैलरी यहाँ पर होगी, आउटडोर साइंस पार्क भी होगा जहाँ पर खुले परिसर में डायनासोर और विभिन्न विलुप्त जीवों के आदमकद मॉडल लगाए गए हैं, और हेल्थ और हाइजीन गैलरी भी होगी। तो हमारे नमस्कार के बहुत सारे टॉपिक इसमें हैं
1: जी। बिल्कुल सही बात है। और आज एक नज़र में अब बात करते हैं कि तेज़ गर्मी और लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए एमपी हॉस्पिटल में आज से शाम को भी ओपीडी चालू रहेगी, जिसका समय हर रोज़ शाम को 5 बजे से 7 बजे तक का रहेगा। और यह न्यू

0: ओपीडी भवन में चलेगी। इसमें मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक, यूनिट हेड और दूसरे डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देंगे और सुबह का जो समय है हर रोज की तरह ओपीडी का, वो 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा।
1: बिल्कुल, तो आपके स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना ज़रूरी है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, जो राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अब पारंपरिक 3 विषयों के बंधन से मुक्त होकर अपनी पसंद का 4था वैकल्पिक विषय भी चुन सकेंगे। यह 4था विषय आपकी मुख्य स्ट्रीम साइंस,

आपके स्कूल में स्वीकृत होना चाहिए। अगर आप फिजिकल एजुकेशन ले रहे हैं तो भी इसे ले सकते हैं, पीटीआई का पद वहाँ होना चाहिए। और एक और बात यह है कि भाई जो हमारे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं राजस्थानी सरकारी स्कूल के, तो अगला जो सत्र है अभी जो शुरू हुआ है 26-27 का, इसमें इनकी निशुल्क यूनिफॉर्म सहायता राशि अब सीधे बच्चों के बैंक खातों में जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

0: और अब बिना बात करते हैं आईपीएल मैच की। तो कल दो मैच खेले गए, पहला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच खेला गया, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने अधिकांश तीय पारी में जीत हासिल करी। और दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस के बीच हुआ, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को आखिरी गेंद पर 2 विकेट से हराया।
1: बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था अनीता, ये लास्ट वाला। और आज धर्मशाला में मैच होने वाला है 7:30 पर शाम को, और ये होगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब किंग्स।

0: और बिना देखा जाए तो हमारा देश डिजिटल इंडिया, स्पेस टेक्नोलॉजी और एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज का 11 मई का दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज का दिन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों, तकनीकी प्रगति और नवाचार के प्रति हमारे सम्मान को प्रदर्शित करने का दिन है।
1: बिल्कुल, 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया था। ये पोखरण 2 के नाम से जाना जाता है। इसे ऐतिहासिक उपलब्धि के कारण ही भारत दुनिया की परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल हुआ। इस दिन की स्मृति में 1999 से हर साल ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य अनिता विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उपलब्धियों का सम्मान करना, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रोत्साहित करना, नई तकनीकों के विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को नवाचार के लिए प्रेरित करना।
0: और 11 मई के दिन दो और बड़ी उपलब्धियां भारत के नाम रही थी, वो थी हंसाश्री और भारत ने स्वदेशी 2 सीटों वाले विमान हंसा 3 के बेंगलुरु से पहली उड़ान भरी थी। और इसी दिन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इसी दिन हवा में मार करने वाली त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया था। और अब बताते हैं कि इस दिवस को क्यों मनाया जाता है। तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि देश के उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को सम्मानित करना जिन्होंने भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाया, छात्रों और युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना, स्टार्टअप और उद्योगों को आधुनिक तकनीकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना इस दिन का मुख्य उद्देश्य है।
1: बिल्कुल, और इस बार का जो थीम है वो है रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, जिम्मेदार नवाचार के माध्यम से समावेशी विकास। इसका जो प्रमुख पहलू है इस थीम का वो है कि इस तकनीकों का उपयोग करके नैतिक और संतुलित तरीके से ग्रामीण और शहरी के जो बीच का जो अंतर है उसे कम करना, और एआई, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष नवाचार और डीप टेक रिसर्च पर जोर देना।

0: बिना देखो हमारे देश में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने पेशे के लिए, अपने लिए नहीं अपने देश के नायकों को बचाने के लिए राष्ट्र की सेवा में इस्तेमाल किया। एक ऐसे ही भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर वकील हुए आसिफ अली। आसिफ अली उन चुनिंदा नेताओं में से एक थे जिन्होंने कानूनी ज्ञान और राजनीतिक सक्रियता का बेहतरीन संतुलन पेश किया।
1: बिल्कुल, इनका जन्म 11 मई 1888 में दिल्ली में हुआ और ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और जेल भी गए।
0: और आसिफ अली अपनी बेहतरीन वकालत के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मामलों में क्रांतिकारियों का बचाव किया और उसके बाद आसिफ अली हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक रहे। उन्होंने विभाजन का विरोध किया। आसिफ अली स्वतंत्र भारत द्वारा संचालित संयुक्त राज्य अमेरिका में नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने ओडिशा के राज्यपाल के रूप में भी काम किया और रेलवे और परिवहन मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला।
1: बिल्कुल, 2 अप्रैल 1953 में आसिफ अली का निधन हो गया।
0: आसिफ अली की पत्नी अरुणा आसिफ अली भी एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थी। आसिफ अली आज हमारे बीच नहीं हैं, किंतु आज का दिन हमें ये एहसास कराता है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, कभी दूसरों के लिए भी जी कर देखिए।

0: देखो बिना, कुछ लोग शुरू से ही इतने प्रतिभावान होते हैं जिनकी प्रतिभा को उनसे ज़्यादा दूसरे लोग जान जाते हैं। दुनिया के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों में से एक माने जाने वाले जिद्दू कृष्णामूर्ति, जिनको 1909 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेता C.W. लीडवीटर ने उन्हें देखकर कहा था कि ये बालक भविष्य में विश्व गुरु बनेगा, और ये बातें सही भी हुई।
1: बिल्कुल, एक भारतीय दार्शनिक, आध्यात्मिक चिंतन और वक्ता। 11 मई 1895 आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इन्होंने पूरी दुनिया में मानव मन, स्वतंत्रता, भय, रिश्ते, ध्यान और आत्मज्ञान जैसे विषयों पर गहरी बातें की।
0: और 1929 में नीदरलैंड में आयोजित एक विशाल शिविर में ऑर्डर ऑफ द स्टार को भंग कर दिया और कहा कि सत्य एक पथहीन भूमि है। उन्होंने ये भी बताया कि धर्म या गुरु के माध्यम से सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। उनका ये भी मानना था कि इंसान को अपने भीतर बदलाव लाने के लिए किसी बाहरी शक्ति की ज़रूरत नहीं है। वे कहते थे कि स्वयं का अध्ययन ही ज्ञान की शुरू

0: शुरुआत है।
1: बिल्कुल, उनके अनुसार ध्यान केवल नेत्र बंद करना नहीं है, सच्चा ध्यान है हर विचार को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखना और पूरी जागरूकता में जीना। अनीता, उनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें भी हैं, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम द नोन और थिंक ऑफ दीज थिंग्स। भारत और विदेशों में इन्होंने कई स्कूलों की स्थापना की जहां न केवल अध्ययन बल्कि व्यक्तित्व और जागरूकता पर भी जोर दिया गया। भारत में इनके प्रमुख संस्थान हैं कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, द स्कूल ऑफ KFI और ऋषि वैली स्कूल।
2: और उनका जीवन एक ऐसे अन्वेषण की कहानी है जिसने मनुष्य को भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय एक स्वतंत्र और जागरूक व्यक्ति बनने की प्रेरणा देता है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से, और 9:10 से नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम लेकर हम फिर से होंगे आपके साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का देशव्यापी आयोजन आज, प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और पश्चिमी राजस्थान झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में, बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में पारा 46 डिग्री के पार दर्ज। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की है। श्री मोदी कल हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी तरीके से प्रबंधन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल ही के सालों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत पर्व 2026 में भाग लेंगे। इसका आयोजन पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सोमनाथ महादेव की पूजा और अभिषेक करेंगे। इसके बाद वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गुजरात के सोमनाथ में प्रधानमंत्री का रोड शो भी रखा गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण

0: के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के 41 जिलों के प्रमुख शिवालयों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे। देवस्थान विभाग के आयुक्त लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में रखा गया है। इस दौरान महाआरती होगी और कलश यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री शर्मा कल अजमेर जिले के पुष्कर के कडेल गांव में ग्राम विकास चौपाल को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में राजीविका के माध्यम से 17.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं से संवाद करते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि घर घर शौचालय निर्माण, हर घर नल से जल, जनधन खातों और उज्ज्वला योजना से करोड़ों महिलाओं का जीवन बदला है।
1: युवा, किसान, महिला, मजदूर, अगर हम इनका सहयोग करते हुए इनका जीवन अगर ऊपर उठता है, गांव, हमारी तहसील, हमारा जिला, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। और इसीलिए हमारी योजनाएं हैं वो अधिकतर इन्हीं के इर्द गिर्द चलती हैं और इन्हीं को लेकर के हम चलते। पहले गांव में जाते थे तो पहले तो लकड़ी इकट्ठी करके लाते थे, कोई पेड़ों को छांट करके उसकी लकड़ी काटते थे, उससे खाना बनता था। खाना कई परिवारों में आज भी बनता है, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि बारिश के समय में उससे और परेशानी होती, ईंधन गीला हो जाता था, भूख देते देते आंखों में भी धुआं जाता था और फेफड़ों में भी धुआं जाता था। लेकिन इसका किसी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया और घर घर में उज्ज्वला का कनेक्शन देकर के, गैस की टंकी देकर के हमारी माता बहनों का सम्मान करने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
0: ग्राम विकास चौपाल में श्री शर्मा ने किसानों और युवाओं से भी बातचीत की। उन्होंने किसानों को परंपरागत खेती से आगे बढ़कर आधुनिक और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। रात्रि विश्राम के बाद मुख्यमंत्री ने आज सुबह कडेल गांव में पैदल भ्रमण कर बुजुर्गों और महिलाओं से बातचीत की। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत करने की घोषणा की। इंदिरा गांधी नहर में कल से बंदी समाप्त हो गई। बीती रात 12 बजे के बाद से अधिकारियों ने हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी के पास पानी प्रवाहित करने का काम शुरू कर दिया है। राजस्थान फीडर की रीलाइनिंग के कारण पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता रामकिशन ने बताया कि फिलहाल 10 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि बंदी खत्म होने से हजारों लोगों को राहत मिलेगी और पानी की समुचित आपूर्ति हो सकेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी का असर है। बीते 24 घंटों में बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में प्रचंड लू के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। बाड़मेर में पारा 46.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं जैसलमेर में भी अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि लू के थपेड़ों से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है।
2: सवेरे से ही सूर्य देवता के तेवर तीखे हो जाते हैं। भीषण गर्मी के चलते स्वर्ण नगरी के पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। अत्यधिक गर्मी के चलते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आम जन से विशेष एहतियात बरतने की अपील की है। गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष सावधानी बरती जा रही है। वहीं भीषण गर्मी के मौसम में मुक पक्षियों के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा परिंदा अभियान चलाया जा रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: जोधपुर और बीकानेर में भी अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार मापा गया। प्रदेश के 19 शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज भी हीट वेव की प्रबल संभावना है। वहीं रातें भी काफी गर्म रहेंगी। साथ ही नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं आंधी और हल्की बरसात हो सकती है। उधर हनुमानगढ़ जिले में पिछले 3-4 दिनों से जारी भीषण गर्मी के दौर के बीच आज सुबह मौसम अचानक बदला और कई स्थानों पर झमाझम पानी बरसा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। भारत ने एक समाज के रूप में अपनी

0: संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलता से बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने रेलगाड़ियों में मिडिल बर्थ के उपयोग को लेकर एडवाइजरी जारी की है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि मिडिल बर्थ खोलने का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्धारित है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि रेलवे नियमों के तहत सुबह 6 बजे बाद बीच की बर्थ फोल्ड करना अनिवार्य है, जिससे निचली बर्थ पर यात्री आसानी से बैठ सकें। उन्होंने बताया कि अपर बर्थ के यात्री पूरे दिन बर्थ का उपयोग कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का देशव्यापी आयोजन आज, प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। और पश्चिमी राजस्थान झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में, बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में पारा 46 डिग्री के पार दर्ज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं और साथ ही एफएम रेडियो लेक सिटी पर भी। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में।
3: बिल्कुल अनीता, और हमारे श्रोताओं को फिर से याद दिला दें कि हमारा ये जो मंडे होता है, ये फिट लाइफ मंडे हमारे श्रोताओं से कनेक्ट करने का भी होता है। तो हमारे श्रोताओं से ये याद दिला दें कि भाई आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, ये भी बात बता सकते हैं। और आप अपने कोई सुझाव देना चाहें तो हमें व्हाट्सएप करिएगा 9462697568 इन नंबर पर, और व्हाट्सएप भेज दीजिएगा जल्दी से जल्दी, मतलब 9:25 से पहले तो भेज दीजिएगा।

0: बिना अगर देखा जाए तो आज के समय का ट्रेंड बिल्कुल बदल चुका है, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे किसी भी तरह का हो। आज के खाने पीने की अगर बात करें तो हम खाने की चीज़ों में स्वाद देखते हैं, स्वास्थ्य नहीं। हम बड़े तो चलो फिर भी ध्यान रखते हैं, लेकिन जब बच्चों की बात होती है ना तो वो खाने पीने में बड़ी ही आनाकानी करते हैं, लेकिन अगर उनको कुछ सिखाया जाए तो ये मुश्किल काम नहीं है, क्यों बिना?
1: बिल्कुल, हमारा जो टॉपिक है आज हेल्दी हैबिट्स में वो है बच्चों में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करना, और ये बचपन से ही करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे उनकी ग्रोथ, इम्यूनिटी, दिमागी विकास और भविष्य की सेहत पर असर पड़ता है। तो सबसे पहला तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको उनको संतुलित आहार देना बचपन से ही सिखाना पड़ेगा। हमने बहुत सारे ऐसे मीम्स देखे होंगे अनीता, जिसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो से कि हमें चॉकलेट नहीं चाहिए, तो ये इतनी मेहनत करनी पड़ती है पेरेंट्स को कि बचपन से ही उनमें ये हैबिट्स डालें। तो उनके जो खाने में दाल, पनीर, दूध, दही, हरी सब्जियां, मौसमी फल और रोटी, दलिया, पोहा, उपमा ऐसे और सूखे मेवे, ये सब खाने में शामिल करना जब से वो खाना सीखते हैं तब से ज़रूरी है। आप उनके टेस्ट बड्स को डेवलप आप खुद कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। और वो कहते हैं ना कि बच्चे भी वही सीखते हैं जो आप अपने घर में देखते हैं, बड़ों को करते हुए देखते हैं, इसलिए आप भी ऐसी चीज़ें खाएं जो स्वास्थ्य के लिए ठीक हो, जिससे आप बच्चों को भी फोर्स कर सकें कि देखो हम भी खा रहे हैं तो आप भी खाइए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स खुद है ना बाहर से मंगा के खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स इस तरह के पीते हैं, पैक्ड ड्रिंक्स पीते हैं जो नुकसानदेह होता है। तो उनके लिए आप उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट कीजिए कि हम भी घर का बना ही खाना खा रहे हैं। जो चीज़ें वो नहीं खाते हैं उनका आप स्वरूप बदल दीजिए, जैसे लौकी, करेले, तरोई, पालक, ये चीज़ें वो नहीं खाते तो आप उनको पराठे में बना के दे दीजिए, या उन या कटलेट्स बना कर दे सकते हैं। तो तरीके कई हैं, बस थोड़ा सा आपको जहमत उठानी पड़ेगी।
1: बिल्कुल, एक हैबिट और आजकल देखने में आती है बच्चों की कि उनको स्क्रीन दिखाकर खाना खिलाया जाता है, तो आप ये शुरू से ही आदत ना डालें, क्योंकि एक बार आदत पड़ जाती है उसके बाद छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है। फिर पानी पीने की आदत, और साथ में उन्हें सलाद वगैरह खाने की, उनको बहुत सारी जो ऐसी गैस नहीं जला के जो हेल्दी रेसिपीज़ होती है वो उनके साथ बनाए, उससे उनका टेस्ट डेवलप होगा और उनको खाने के प्रति रुचि बढ़ेगी। और साथ ही एक फिक्स टाइम मील का रखें, ताकि उस वक्त, जैसे कहते हैं ना कि अगर रोज़ाना का हमारा टाइम फिक्स होता है तो हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो अपने आप भूख लगा देता है उस वक्त।
0: जी बिल्कुल सही कहा। देखो सुबह के समय तो क्या है, सब कोई ऑफिस जाते हैं और बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, सुबह के समय सब एक साथ नहीं होते, लेकिन शाम का खाना सब एक साथ मिलकर खाएं, सारे दिन के जो आपके साथ साथ हुए हैं घटनाएं अच्छी बुरी जो भी हैं परिवार के साथ मिलकर शेयर करें और खाना

0: टेबल पर एक साथ मिलकर खाएं, ऐसी आदत डालें तो उसमें परिवार के साथ रहने से प्यार बढ़ता है, क्यों बिना?
1: बिल्कुल, एक बात और हम जोड़ सकते हैं कि अच्छी आदतों में जो बिल्कुल ज़रूरी आदतें हैं कि एक तो हाथ धोकर खिलाएं,
0: जी
1: धीरे धीरे चबा कर खाने को सिखाएं उनको, और प्लेट में खाना बर्बाद ना करने की आदत डालें और भूख लगने पर ही खाना उन्हें दें, पीछे पड़ पड़ के वो कभी भी नहीं खाते, ये बात ध्यान रखें।

0: बीना, ये देखो कि हमारी जो झीलों की नगरी उदयपुर है, यहाँ हर रोज हजारों की तादाद में लोग शहर का लुत्फ उठाने आते हैं। तो कुछ तो गाड़ियों से आ जाते हैं और कुछ आते हैं रेलगाड़ियों से, है ना। तो शहर की हलचल सेगमेंट में आज हम बात करेंगे उदयपुर से चलने वाली रेलगाड़ियों की। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन राजस्थान का एक प्रमुख रेलवे केंद्र है, जो दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों को सीधा ट्रेनों से जोड़ती है। जयपुर असावरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो हर रोज सुबह सिटी स्टेशन से 3:35 पर रवाना होकर 8:35 पर असावरा पहुंचती है।
1: बिल्कुल, उदयपुर सिटी से बीकानेर के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलती है जो सिर्फ बुधवार को चलती है, और ये शाम को 6:45 पर रवाना होती है और अगले दिन सुबह 9:25 पर बीकानेर जंक्शन पहुंचती है। ऐसे ही सप्ताह के सातों दिन उदयपुर सिटी कोटा स्पेशल चलती है जो शाम को सुबह 6:40 पर चलती है और दिन में 12:00 कोटा पहुंचती है। वीरभूमि एक्सप्रेस के बारे में हम सब जानते हैं, ये 8:35 पर शाम को रवाना होती है इंदौर के लिए। और कवि गुरु एक्सप्रेस है जो ये उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से चलती है।

0: कामाख्या रेलवे स्टेशन तक, और ये सिर्फ सोमवार को चलती है, और ये 16:05 यानी 4:05 पर ये रवाना होती है।
1: और
0: और
1: उदयपुर जयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस हर रोज़ सवेरे 6 बजे रवाना होकर दोपहर 1:40 पर जयपुर पहुंचती है। उदयपुर जयपुर हॉलीडे एक्सप्रेस जिसका समय हर रोज़ दोपहर 3:05 पर होता है और ये रात को 10:15 पर जयपुर पहुंचती है।
0: इसके अलावा एक उदयपुर कोलकाता चितपुर स्पेशल है जो सोमवार को रवाना होती है और ये रात को 12:45 पर रवाना होती है, और कोलकाता रेलवे स्टेशन पर ये 56:35 बाद पहुंचती है। मतलब ये बहुत लंबा ट्रैक है। और इसके अलावा मेवाड़ स्पेशल की बात हम कर चुके, ये उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए जाती है दिल्ली के लिए, और इसका समय है 18:40 यानी कि ये जाती है 6:40 पर, और अगले दिन सुबह 7:10 पर ये हजरत निजामुद्दीन पहुँचती है। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रेन्स हैं, और ये बात ज़रूर है कि अगर आप कोई भी टिकट बुक कर रहे हैं तो पहले उसका एकदम सही समय रेलवे समय सारणी से ध्यान कर लें, और अपना जो प्री बुकिंग है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो उदयपुर है वो इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ पर टिकट बुकिंग बहुत एडवांस में कराना बहुत ज़रूरी है।
1: आपने बिल्कुल सही कहा। और अब बात करते हैं श्रोता संवाद की। श्रोताओं के मैसेज भी हम तक पहुंच रहे हैं। तो
0: बिल्कुल
1: मधुसूदन जी सवालका का मैसेज हम तक पहुंचा है, वो लिखते हैं कि हम चाहते हैं कि आकाशवाणी की जो जानकारियां हैं किसी समाचार पत्र में छपें, और आज जो गाने सुनाए गए वो उन्हें अच्छे लगे, रेलों की जानकारियाँ उन्हें अच्छी लगें, और बच्चों को संतुलित और उन्हें फास्ट फूड से दूर रखें, कमल सुहालका ने लिखा है। और परमानंद जी कुमावत का बड़ा अच्छा सा मैसेज है, वो कह रहे हैं कि बच्चों को करेले की सब्जी भी खिलाना सिखाएं। और इसके साथ ही ये जो श्रोता है ये आनंद विहार उदयपुर के हिरणमगरी के श्रोता हैं, और उसके अलावा और भी संदेश हम तक पहुंचे हैं बिना।
0: बिल्कुल, एक हमारी श्रोता है सेक्टर की टेकरी लिंक रोड से, ये लिखती हैं, इनका नाम है किरण कुमावत, ये नमस्कार भी कह रही हैं और कहती हैं कि इनको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, और जो भी जानकारियां देते हैं जैसे आईपीएल की अपडेट हम देते हैं, और जो भी दिन का विशेष होता है उसकी इतिहास के बारे में हम जानकारी देते हैं, ये इन्हें अच्छी लगी। और आज हमने जो हॉस्पिटल के ओपीडीज के नए समय बताए तो इन्हें ये जानकर अच्छा लगा।
1: जी, और भोपालपुरा से सविता शर्मा जी का भी मैसेज हम तक पहुंचा, ये हमारी रेगुलर श्रोता हैं, मैसेज करती हैं हमेशा, और इन्हें आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा है, और जितनी भी जानकारियां हमने दी इन्हें बहुत अच्छी लगी, और बीना जी और अनीता जी को नमस्कार भी इन्होंने लिखा है, तो हमारी तरफ से भी इन्हें नमस्कार। और जितने भी श्रोताओं ने हमें मैसेज किए, हमारे प्रोग्राम को पसंद किया, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और अब सुनवाते हैं प्रोग्राम का आखिरी गीत और श्रोताओं से लेते हैं इजाज़त। आज इस कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ अनीता, और मेरे साथ थी
0: मैं थी आपकी रेडियो दोस्त बीना। हम फिर से मिलेंगे इस गीत के साथ, छोड़े जाते हैं आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम से, लेते हैं आज्ञा, नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशाह इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
2: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए। हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
2: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
2: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
1: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित

0: होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं?
1: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है हम समुद्रों में कचरा खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
1: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर द्वीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
0: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
1: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है
1: माई बाइसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है, और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
3: वी आर फाइन सर।
2: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल वेल?
3: यस सर।
2: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
3: Yes, sir. We have seen.
4: I have seen, sir.
5: I like bicycle, sir.
6: I love it.
2: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me how it looks like.
7: It has two wheels.
8: My cycle is pink.
9: And mine is blue.
10: My cycle has a bell.
2: Now tell me, have you ever ridden a bicycle?
3: Yes, sir!
2: How does it feel to ride a bicycle? Feels great, isn't it?
3: Yes, sir!
2: So, let's listen to a short, lovely poem on bicycle today.
3: Trin, trin, trin!
2: Do it again, please.
3: Trin, trin, trin!
2: I have a red bicycle.
3: I have a red bicycle.
2: I pedal and I ride.
3: I pedal and ride.
2: Trin, trin, trin goes the bell.
3: Trin, trin, trin goes the bell.
2: Makes my friends move aside.
3: Makes my friends move aside.
2: The seat is blue in color.
3: The seat is blue in color.
2: The tires and pedals are black.
3: The tires and pedals are black.
2: Sometimes fast.
3: Sometimes fast.
2: Sometimes slow.
3: Sometimes slow.
2: But my bicycle is always on track.
3: But my bicycle is always on track.
2: To keep my bicycle moving.
3: To keep my bicycle moving.
2: All I need is some air.
3: All I need is some air.
2: I put on my little helmet.
3: I put on my little helmet.
2: And I go happily everywhere.
3: And I go happily everywhere.
2: Well, children, you have now heard this poem and recited with me. How did you find it? Isn't it lovely?
3: Yes, sir. It's lovely.
2: So now, let's listen to a beautiful song on this poem, which is being sung by a lovely little girl just like you.

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We liked it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसिकल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे।

0: अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूं मां।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
3: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
4: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े।

0: वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है। साहब
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथ सिंह निशाना साधो।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर।
4: सर
3: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर।
4: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है, क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था।

0: पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम। सलाम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: मीडियम वेव 266.66 मीटर पर अभी आप सुन रही थी प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। वो सदाबहार गीत जो बरसों पुराने होकर भी सुने और पसंद किए जाते हैं, कुछ ऐसे कलाकार होते हैं, कुछ ऐसे गीत होते हैं जो बरसों के बाद भी याद और सुने जाते हैं। आइए सुनते हैं प्रोग्राम यादों के झरोखों से।

आज का पंछी, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। प्रोग्राम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेला से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

0: अगला गीत फिल्म जीने की राह से और आवाज एक बार फिर से मोहम्मद रफी की।
1: सुनो एक तराना नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

0: लता मंगेशकर को अभी आप सुन रही थी फिल्म जब जब फूल खिले में। प्रोग्राम का अगला गीत फिल्म का नाम है सच्चा झूठा से, आवाज़ लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी की।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

0: 90.
1: प्रोग्राम का अगला गीत फिल्म उपहार से और आवाज मुकेश
2: टूटो ही देती तुम मोहे उलाहन बांसुरी में गुण एक मेरी पर तेरी हंसी में

मुकेश की आवाज़ में उपहार फिल्म का गीत अभी आप सुन रही थी और अगला गीत है पत्थर की सनम फिल्म से, आवाज़ें लता मंगेशकर और मुकेश की।

0: कभी कभी।
1: आइए आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम का आखिरी गीत, पड़ोसन फिल्म से आवाज लता मंगेशकर और साथियों की। और इस गीत के साथ ही अपनी दोस्त अनीता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आरजी अनीता के साथ हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 11 बजने को है। आइए सुनते हैं राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम घोखड़ा।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: यादों की जरूर खुशी, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे।

सोनू कंवर री आवाज में मन भवन हुआणो गीत राजस्थानी कार्यक्रम में आप हुणियो सा। अब हुणावा सा सीमा मिश्रा बाईसारी आवाज में एक और गीत।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, वहां से हम सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर एक जनसभा को संबोधन करने का सीधा प्रसारण देंगे।

0: प्रज्वलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
1: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को, द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें, और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम्य पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
2: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परलयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतुवंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं घृष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायप्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026, and Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture and our deep faith. As we mentioned that Somnath is among the most important and the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbh Abhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister, and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbh Abhishek?
3: नमस्कार। आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभिषेक आज हो रहा है इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक

0: अभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहाँ विशेष तीर्थ होते हैं वहाँ पे सहस्रघट यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है, एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं सभी वो पिंड रूप हैं, लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है, क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपने वाणी को शुद्ध करो, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
1: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
0: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगि गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण, अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्थिति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए हैं, या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं, वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो ये प्रथम क्यों है, क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है, अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए, मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए
1: जी।
0: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं। और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा, चंद्रमा अर्थात हमारा मन, जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है, चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है, इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है
1: जी।
2: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफरिंग प्रेयर्स एट द हिस्टोरिक सोमनाथ तीर्थ व्हिच इज द फर्स्ट ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स, एंड टुडे द 11th ऑफ मे मार्क्स द 75th ईयर सिंस द इनॉग्रेशन ऑफ द रेस्टोर्ड टेम्पल बाय द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड एट द beginning of this year had gone to Somnath temple for the Somnath Swabhiman Parv, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the Prime Minister said recently in न्यूज़पेपर आप

0: article, the Honorable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tells us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the Somnath Mandir.
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है. मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से. और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं. कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है. चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है. अरब सागर के तट पर कपिला हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है. और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं. और अंतर्राष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है. हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार चार करता रहा है. राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है. सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा. उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को. और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है. पुष्प सज्जा की गई है. शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं. डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं. और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है. हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है. साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन जो अलग अलग ये बनाएंगे. वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी और हवाई करतब दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी. 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था. उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में. और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है.
0: Yes, you are absolutely right, Neelam, and as you mentioned that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine Prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure in our consciousness. Today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny.
2: परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च.

0: విష్ణుః శ్రీమదా భగవతో మహా పురుషస్య విష్ణుః రాజ్ఞయా ప్రవర్త మానస్య అద్య బ్రహ్మణో.
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें.
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूप मंडनम, प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है. उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं, वहाँ से और शिखर तक एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं. अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक पे जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है, और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है. और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है, उसमें विशेष रूप से जहाँ भी कोई मंदिर होगा वहाँ त्रिशूल विशेष होगा. त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा. वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम. इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है. ये तीन प्रकार के अहंकार हैं, इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए, और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है. अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया, और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत हमें शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम कारण यदि समझ सकें, तो हम समझेंगे कि यह सत्व, रज और तम ही है. इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है. इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है, उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है. रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे, इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जो साम्यावस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है. इसीलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है.
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए. हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान

0: के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है। मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर। सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है। अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और ये भी संयोग ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं और यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में और वायु सेना के जो यान हैं वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of rupees 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy, Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jayapal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions. It is said that Raja Bhoj too helped with the construction. Karna, Dev and Siddharaja Jayasimha played a pivotal role in restoring Gujarat's political and cultural strength. Bhava, Brihaspati, Kumarapal Solanki and Pashupal Acharyas rebuilt and sustained the shrine as a great center of worship and learning. Vishaladev Vaghela and Tripurankara protected its intellectual and spiritual traditions. In the 1940s, when the spirit of freedom swept across India and the foundations of a new republic were being laid under the leadership of towering figures like Sardar Patel, one thing continued to trouble Sardar Patel deeply: the condition of the Somnath Temple. On the 13th of November 1947, during Diwali, he stood next to the dilapidated ruins of the temple with seawater in his hands and said, "On this auspicious day of the Gujarati New Year, we have decided that Somnath should be reconstructed." He asked the people of Saurashtra to do their best. This was a holy task in which all should participate. And on his clarion call, it was not only the people of Gujarat, but also the people of entire India that responded enthusiastically.
0: और इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास का एक सूत्र थामे है सोमनाथ मंदिर, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है। आयोजन का विवरण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आइए, आपको सुनवा रहे हैं एक भजन।

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है, इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: एंड यस नीलम द टाइम फॉर द सूर्य किरण द एरोबैटिक टीम द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force led by Group Captain

0: Ajay Dasharathi performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed. And a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And early, we also saw the petrol being dropped from the helicopters of the Indian Air Force. And now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the Dwajarohan is going on.
1: जी बिल्कुल. और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे.
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं. इसमें बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे. तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं. और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उस प्रणव में आ जाता है. उस प्रणव के तीन अक्षर क्या हैं? अ, उ और म. तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है. वहीं उ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है. और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में, गले के कंठ से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में, तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है. तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं. और
0: ध्वजारोहण.
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है. अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है. इसीलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन. ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का, उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए. मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए. लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाए तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल. प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है, उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है. तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं. हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं. तो वहां हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में? हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिसपे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव है. इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, पुराणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है.
1: जी, तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं, और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं. और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है. और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई है. स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहाँ पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इस अवसर को विशेष बना दिया है. पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देखकर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे और साथ ही जोश भी भर दिया है. और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं, लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे. और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए. माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में.
0: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. एंड incidentally, Neil.

0: Today is the very day that the first president of India, Dr. Rajendra Prasad, had inaugurated the reconstructed...
1: Dr. Rajendra Prasad had on that occasion said that the Somnath temple proclaims to the world that anything with unparalleled faith and love cannot be destroyed. He expressed the hope that the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade. And as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi, Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy. It has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat, Shrestha Bharat.
2: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जो धार्मिक स्थल हैं इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहें, पेयजल की सुविधाएं रहे और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाएं, वो तस्वीरें ले सकें। अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें। जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी विशेष की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं। ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है। और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग हैं उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें। और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है। और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए सोम मंदिर के में। इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार।
3: जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at

0: इस कार्यक्रम में हैं और इस पूरे आयोजन के हिस्से के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिनमें कलश यात्रा शामिल है, भजन संध्या है, ओमकार मंत्र का जाप है, सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन से लेकर सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन तक है और ये 8 तारीख से शुरू हुआ कार्यक्रम आज 11 मई अब ये कार्यक्रम चल रहा है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन किया है, साथ ही जो कलश है उसके माध्यम से जलाभिषेक किया गया है, कुंभाभिषेक उसे नाम दिया गया। जो पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है, ध्वजारोहण कहा गया है और वायु सेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान है अलग अलग आकृतियां बनाई हैं, पुष्प वर्षा मंदिर पर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो हैं उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है विभिन्न अवसरों पर। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
1: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी में किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़ के आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है। वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैश्य है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना है कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले।
0: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
1: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
0: जी,
1: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है तो ये हाथ किसका अंग है, जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूं तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
0: जी।
1: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला कौन, वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष, नाभि अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम 3 लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे सौर लोक कहा। तो इन 3 चक्रों में जब हम बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 3 प्रकार, जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है दृष्टि रूप से, भगवान किस रूप से लेते हैं, दृष्टि रूप से और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रह के प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों, क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेज

0: जो मैं रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है, उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपने एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे चार प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन चार प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं।
1: जी, तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर, तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आए और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है। इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है।
1: जी,
0: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं।
1: जी, एक और प्रश्न है, अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
0: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है, लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग, यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है।
1: जी,
0: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपकी सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जाएं हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जाएं अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं।
1: जी, यहां मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिव जी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है दोनों में अंतर क्या है?
0: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से इस स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है।
1: जी,
0: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले।
1: जी,
0: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार के शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैनमेड है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं, और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मधा पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा, इस प्रकार के विधान से भगवान

0: शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है।
1: जी, कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए।
1: जी,
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता। आप ये भी तो देखें, तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए, तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में, तो यह आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस, सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया, तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मत मतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहां पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के उसको अर्पण किया जाना चाहिए, जैसे गाय है तो एक अंग है भगवान का, एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध वो किया, दूध क्या है सबसे सूक्ष्म रूप है, अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है, इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आपह मनोव्यवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं, तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है, तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं, या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र, दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को, तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें, भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्वसुलभ हो जाता है, इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
2: यस, एंड वी आर bringing to you the Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhaspatan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has offered prayers at the Sri Somnath Temple, and he has also watched the special air show. The Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath Temple, and the Honorable Prime Minister will be addressing a gathering at Somnath in just a short while from now, and meanwhile we bring you some devotional bhajan.

0: 2026 at Prabhas Patan in Somnath, Gujarat.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं और पारंपरिक परिधान कृष्ण धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में पताकाएं हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन करके यहाँ पर आए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मस्तक पर जो है वो भी तिलक धारण किया है और यहाँ पर विशाल जनसमूह जो है बेहद उत्सुक और उत्साहित है, गमछे धारण किए हुए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, हाथों में पताकाएं हैं लगातार लहराते हुए और एक विशाल स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है जिस पर की मंदिर की प्रतिकृति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी उन्हें पहना कर अभिनंदन किया गया और साथ ही अंग वस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए और इस वक्त मंचासीन जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी को अब एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, एक बेहद सुंदर तस्वीर माननीय
0: प्रधानमंत्री Minister in Gujarat government, Shri Arjun Modwadia. Now seen a garland being presented to the Honorable Prime Minister by the organizers.

0: Now, seen a garland being presented to the Honorable Prime Minister by the organizers, and people have been waiting since a long time to hear the Prime Minister, and the Honorable Prime Minister will be addressing the gathering very soon.
1: और कौशिक जी, मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूंगी कि जब हम बहुत दूर से यात्रा करके जाते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से किसी भी मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो बहुत अधिक भक्ति भाव से भरे होते हैं। तो जो लोग उसी स्थान पर रहते हैं वो अपने आप को बेहद भाग्यशाली मानते होंगे। और इस समय जो ये विशाल जनसमूह हम देख रहे हैं, इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मंदिर की सेवा में भी लगे होते हैं, वो कार्यकर्ता होते हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो स्वेच्छा से मंदिर के विशेष कार्य जो हैं वो करते हैं। और यहाँ पर हम इस समय देख पा रहे हैं उत्साहित जनसमूह है, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से आयोजन और भी भव्य, और अब स्वागत उद्बोधन यहाँ पर
2: विश्वना चौथी वधु लोकप्रिय नेता अने यशस्वी वडाप्रधान आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी साहेब, मारा साथी नायब मुख्यमंत्री श्री हर्षभाई संघवी, मारा साथी सौ मंत्रीश्रीओ, सांसद श्री सोमनाथ ट्रस्टना ट्रस्टीश्रीओ, श्री जेडी परमार, श्री पीके लहरी, श्री हर्षवर्धन नोटिया, श्री विशद भाई मफतलाल, आमंत्रित सर्वे महानुभाव, प्रेस मीडियाना मित्रों, सौ ने मारा नमस्कार। विश्वना सौथी अधिक लोकप्रिय नेता अने आपड़ा लोक लाड़ीला वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी नू हूँ हृदय थी खूब खूब स्वागत करू छू। समग्र देश अने दुनियानी नजर जे राज्यनी चूंटणी पर हती ते पश्चिम बंगाल सहित आसाम अने पोंडीचेरी में पण विकासनी राजनीति ने मळेला प्रचंड जन समर्थन शिल्पी यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी साहेब ने समग्र गुजरात की जनता जनार्दन वती खूब खूब अभिनंदन पाठवु छु। भगवान सोमनाथ नु मंदिर सदियों थी देश की आस्था संस्कृति अड़क संकल्प ने पुनर्जागरण नु जीवंत प्रतीक है। अपनी आस्था अजय अने अतूट प्रतीक आ मंदिर ने ध्वंस करवाना अनेक प्रयासों थया अने दरेक विनाश पछी सोमनाथ भगवान नु मंदिर फरी वधु तेजस्वता साथे उभू थयु छे। आजे आ दिव्य मंदिर विध्वंस माथी पुनर्निर्माण सरदार साहेबना अड़ग निर्धार दृढ़ संकल्प अने राष्ट्रना आत्मसन्मान नु प्रतीक छे। तेमनो आ संकल्प 1951 नी 11 मे पूर्ण थयो ते गौरवशाली विरासत ने आजे 75 वर्ष थया छे। आदरणीय श्री नरेन्द्र भाई मोदीए 2001 में मुख्यमंत्री तरीके सेवादायित्व संभाळ्युं। एज वर्षे तेमणे सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण सुवर्ण जयंती उत्सव उजवीने आपणने तक आपी हती। अने आजे सरदार साहेबनो दृढ़ संकल्प साकार थयानो आ अमृत उत्सव आदरणीय वडाप्रधान श्री मोदी साहेबनी प्रेरणाथी देशनी आजादीना अमृत काळमां ज आव्यो छे ते सोनामां सुगंध समो प्रसंग छे। आखा युगनुं निर्माण करनार विजनरी लोकनायक श्री मोदी साहेबे प्रत्येक भारतवासियों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अने सनातन हिंदू संस्कृति पुनर्जागरण भाव प्रकट प्रबल बनाव्यो छे। आदरणीय श्री मोदी साहेबे अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा ऐतिहासिक प्रसंगे देश नु विजन आप्युं हतुं। सोमनाथ मंदिर पर 1000 वर्ष पहला थयेला आक्रमण सामे शौर्य दाखवनार स्वाभिमानी योद्धाओं ने याद करतु सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ धाम विकास, पावागढ़ में 500 वर्ष पछी ध्वजारोहण अने अंबाजी कॉरिडोर तथा सोमनाथ तालीम संगल द्वारा विरासत भी विकास भी साकार कर्यु छे। अने फरीथी ज्यारे आजे गुजरात में आव्या छे त्यारे फरीथी एमनु स्वागत करीने विरमू छू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात।
0: That was the welcome address by the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, and he mentioned about the various development works that have been undertaken by the visionary leadership of the Prime Minister, Shri Narendra Modi, and he mentioned about

0: to the Kashi Vishwanath corridor, the Sri Ambaji temple in Gujarat, and also the Pran Pratishtha of the Sri Ram Lala temple at Ayodhya. And this is the hallmark of the government of India, and the Honorable Prime Minister is now releasing the commemorative postal stamp, and also the stamp is being now released by the Honorable Prime Minister and the Chief Minister of Gujarat and the Deputy Chief Minister of Gujarat. It's a 5 rupee postage stamp depicting the Somnath Temple.
1: एक स्मारक डाक टिकट इस अवसर पर जारी किया गया। सोमनाथ मंदिर की तस्वीर उस पर बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डाक पुस्तिका है उसे जारी किया और उपस्थित जनसमूह की ओर विशेष रूप से उसे दिखाया भी, और मंच के जो पार्श्व भाग में स्क्रीन है उस पर भी इसकी छवियां इस समय होगी।
0: एंड नाउ नीलम, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द कमेमोरेटिव coin. It is a 75 rupee denomination coin, and it's very beautiful indeed. The two sides can be seen on this very special memento that the Honorable Prime Minister is displaying, and this is to mark the occasion of the 75th anniversary of the consecration of the rebuilt Somnath Temple. It says Bharat, India, rupees 75, with the lion capital of the Sarnath, and on the heads there's the beautiful replica of the Somnath Temple.
1: 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी इस अवसर पर जारी किया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सोमनाथ अमृत महोत्सव। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इस अवसर पर, अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर उपस्थित हैं, और एक विशाल जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक। प्रधानमंत्री जी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है, और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उसके उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में।
0: द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी विल नाउ एड्रेस द गैदरिंग।
2: जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव। गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उपमुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र

सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की यह आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम, आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं। जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में

सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे? और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते

सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें तो आगे के रास्ते दिखते नहीं हैं। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर दो और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की ये आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था तब मैंने कहा था जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा। हर बार उठ खड़ा हो

क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर भेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जामसा महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ

मंदिर का पुनरुद्धार करते हैं। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है, इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं, हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं।

0: इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलिद्वम ब्रह्मा, अर्थात सृष्टि का हरेक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब वो अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करे। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित, ये पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect, and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi.

0: and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
1: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति प्वाइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का उल्लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ, स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉ आशुतोष शर्मा के साथ और एसवाई खान के साथ, अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ, मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
2: अभी आप सोमनाथ अमृत महोत्सव का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया और कौशिक राय। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर देशभर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर के शिखर का जलाभिषेक किया। इससे पहले उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व के तहत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। इसके बाद श्री मोदी ने सोमनाथ पर डाक टिकट जारी कर जनसभा को संबोधित किया। इधर प्रदेश में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री शर्मा ने कहा कि पूरे देश में

0: धार्मिक स्थलों का संरक्षण किया जा रहा है। देशवासी एकजुट होकर संस्कृति और विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं।
1: हमारी विरासत के लिए, हमारी संस्कृति के लिए हमारी सरकार भी लगातार काम कर रही है। 2026-27 में हमने प्रदेश के आध्यात्मिक उत्थान से जुड़े अनेक कार्य किए हैं। पर्यटन आस्था की दृष्टिकोण से प्रसिद्ध तनोट माता के समग्र विकास के लिए विस्तृत योजना बनाई है। पुष्कर खाटू श्याम जी नाथद्वारा केशोराय पाटन गिरिराज जी चित्तौड़गढ़ जैसे धार्मिक और हेरिटेज शहरों में हेरिटेज वॉकवे का निर्माण करवाएंगे। किराड़ू के मंदिर समूह के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कार्य कराए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुष्कर खाटू श्याम जी देशनोक डिग्गी में मुख्य प्रवेश मार्ग मॉडल रूप से बनाया जा रहा है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं।
0: प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं।

0: पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एकजुटता से काम करने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से सात अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग के जरिए आयातित ईंधन के इस्तेमाल को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से एक साल के लिए विदेश भ्रमण टालने का भी आग्रह किया है। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने और अत्यधिक सोने की खरीदारी से बचने की भी अपील की। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम अभ्यास को फिर से लागू करने की बात कही। साथ ही लोगों से खाने के तेल के उपभोग में कमी लाने का आग्रह किया। उन्होंने किसानों से विदेश से आयातित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण प्रयोग की बात कही। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए स्थानीय वस्तुओं की खरीदारी पर जोर दिया। डीग जिले के जटेरी से अब आदि बद्री खो बरसाना और मथुरा को जोड़कर धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कल डीग के जटेरी गांव में आयोजित संध्या चौपाल में शिरकत की। उन्होंने ग्राम रथ अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में कहा कि जटेरी को मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जा रहा है। श्री बेढम ने कहा कि गांव से जुड़ा नया धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित होने से आर्थिक गतिविधियां मजबूत होंगी और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि जटेरी और पुंछरी में कुंडों के विकास के लिए 8.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कोटा के मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की स्थिति पर दोनों अस्पतालों में गंभीर संक्रमण और स्वास्थ्य जटिलताओं के 12 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। डॉक्टर नीलेश जैन की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी इन मामलों को हाई रिस्क वाला बता रही है। अब तक दोनों अस्पतालों में 4 प्रसूताओं की मृत्यु हो चुकी है, वहीं 4 अन्य प्रसूताएं किडनी खराब होने की समस्या से जूझ रही हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने सरिस्का में वन्यजीव अस्पताल और जांच केंद्र को मंजूरी दे दी है। इससे सरिस्का टाइगर रिजर्व के वन्यजीवों का उपचार अब सरिस्का में ही हो सकेगा। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि जल्दी ही अस्पताल का काम शुरू किया जाएगा। अभयारण्य में बाघ बघेरों के अलावा सांभर और चीतल सहित करीब 20,000 वन्यजीव हैं। इनके बीमार और जख्मी होने की स्थिति में इन्हें स्थानीय स्तर पर भी इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडिया वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के ठीक 1:20 हुए हैं। सुनते हैं महिलाओं का खास कार्यक्रम महिला जगत।

0: मेहंदी की जगह कामयाबी सजाती है, मेहंदी की जगह कामयाबी सजाती है, संवरने की जगह सफलता को अपनाती है, चूल्हे की जगह चूल्हा बनाना सीखती है, चार दीवारों में कैद होने के बजाय घर बनाना सीखती है, खिड़की से चांद देखने के बजाय चांद तक पहुंचती है।
1: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों के साथ आज हम हमारे महिला जगत कार्यक्रम का आगाज करते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो सखी पुष्पा व्यास और मेरे साथ है
0: रजनी शर्मा।
1: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल सही कहा रजनी, मेहंदी की जगह कामयाबी सजाती है और संवरने की जगह सफलता को अपनाती है। और साथ ही साथ हम तो यही कहेंगे कि राशन के डिब्बों से लेकर डिजिटल लेन देन तक नारी आर्थिक सशक्तिकरण को अपनाती है। जी हाँ सखियों, आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण केवल एक कमाई तक सीमित विषय नहीं है, यह उनके आत्मसम्मान, निर्णय लेने की क्षमता, परिवार में भागीदारी और समाज में अपनी पहचान बनाने का भी एक प्रश्न है। पहले महिलाएं राशन के डिब्बों में पैसे छुपाकर बचत किया करती थी और वो दौर अलग था, लेकिन आज का समय क्या आ गया है, मोबाइल आ गया है, यूपीआई आ गया है, ऑनलाइन बैंकिंग आ गई है, डिजिटल वॉलेट का उपयोग कर रही है। तो आर्थिक सशक्तिकरण की शुरुआत घर से होती है। जब एक महिला ये समझने लगती है कि महीने का खर्च कैसे नियंत्रित करना है, कहाँ बचत करनी है और कहाँ निवेश किस प्रकार से करना है।
0: कितनी अच्छी बात बोली है कि महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: आज परिस्थितियां पहले के मुकाबले बहुत परिवर्तित है पुष्पा। जैसे गांव की महिलाएं अगर हम देखें तो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से छोटे व्यवसाय चला रही है।
1: बिल्कुल,
0: कोई पापड़ बना रही है, कोई अचार बना रही है, बहुत सी महिलाएं सिलाई कढ़ाई डेयरी जैसे स्वरोजगार से आर्थिक स्थिति में परिवार को योगदान दे रही है।
1: बिल्कुल सही कहा। और इसके साथ ही साथ धन जन योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं। वह स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं में मैं भी कर सकती हूँ का विश्वास जगाया, यानी कि कोई भी काम ऐसा नहीं कि जो महिला नहीं कर सकती है। साथ ही डिजिटल इंडिया अभियान ने महिलाओं की दुनिया बदल दी है। आज सब्जी बेचने वाली एक महिला भी UPI कोड और से भुगतान कर रही है। हाँ बिल्कुल, और घरेलू काम करने वाली महिला भी अपने बैंक खाते और मोबाइल भुगतान करने में समझने लगी है। यहाँ तक कि डिजिटल लेन देन में महिलाओं को कई स्तरों पर मजबूत कर दिया है। QR कोड के माध्यम से उनमें बहुत ज़्यादा पारदर्शिता भी बढ़ी है, कई बार बचत सुरक्षित भी उनकी हुई है और दूसरों पर निर्भरता कम हुई है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है।
0: बिल्कुल, आज की महिलाएं घर बैठे काम कर रही हैं, कोई YouTube चला रही है, अपना खुद का चैनल है, कोई ऑनलाइन कोई कोर्स करा रही है, कोई डिजिटल माध्यम से कपड़े ज्वेलरी खाना तक बेच रही है।
1: बिल्कुल,
0: नारी अब केवल गृह लक्ष्मी नहीं रही बल्कि आधुनिक भारत की डिजिटल सारथी भी है। कल तक जिस नारी की पहचान रसोई के मसालों और राशन के डिब्बों तक सिमटी थी पुष्पा, आज वही उंगलियां स्मार्टफोन के एक क्लिक पर दुनिया भर का लेन देन कर रही है।
1: बिल्कुल सही कहा कि राशन के डिब्बों को छोड़ डिजिटल में आगे बढ़ रही है हमारी महिलाएं। डिजिटल लेन देन आत्मनिर्भरता का एक नया आयाम है और उसको बखूबी निभा रही है हमारी महिलाएं। महिलाओं का घर की दहलीज से डेटा तक का सफर, रोजगार और व्यापार तक पहुंच, सब में महिलाएं आगे आगे आ रही है। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। साथ ही साथ महिलाएं इतनी आगे बढ़ गई है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपना परचम फैला लिया है। तकनीक में महिलाएं बदलते भारत की एक नई शक्ति के रूप में सामने आई है। आज की महिलाएं घर की चौखट तक सीमित नहीं है, वह मोबाइल से लेकर मंगलयान तक अपनी पहचान बना चुकी है।
0: बिल्कुल, महिलाएं कोड लिख रही है, ऐप बना रही है, ऑनलाइन व्यापार चला रही है। महिलाएं अब सभी के लिए जागरूक बन रही है, जैसे नेटवर्किंग डिजिटल कार्य हो गया, बच्चों की पढ़ाई हो गई, डिजिटल तरीके से उसे समझना हो गया, घर बैठे खरीदारी साथ ही ऑनलाइन व्यापार करके कमाई भी कर रही है।
1: बिल्कुल सही कहा रजनी, अब महिलाएं केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि डिजिटल नागरिक बन चुकी है। ऑनलाइन शिक्षा ने महिलाओं और लड़कियों के लिए नए दरवाजे खोले हैं। वर्क फ्रॉम होम और नई संभावनाएं, तकनीक ने महिलाओं को घर से काम करने का अवसर दिया है। आज महिलाएं ऑनलाइन टीचिंग तक काम कर रही है और बहुत सारी वो ऑनलाइन अपना प्लेटफॉर्म अपना रही है।
0: बिल्कुल पुष्पा, जैसे कंटेंट राइटिंग हुआ, वॉइस ओवर हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, ऑनलाइन काउंसलिंग

0: काउंसलिंग हो गई, फ्रीलांसिंग हो गई, जैसे कार्य घर बैठे वो कर रही हैं।
1: हाँ, इससे वे अपने परिवार और करियर दोनों को संतुलित कर पा रही है। टेक्नोलॉजी में महिलाएं केवल उपयोगकर्ता नहीं बल्कि निर्माता और लीडर भी बन रही है, और एक अच्छी लीडर बनकर वह अच्छा प्लेटफॉर्म पर अपना काम कर रही है।
0: बिल्कुल, जो AI डेटा साइंस होती है पुष्पा, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भी महिलाएं अपनी पहचान बना रही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम फैला रही है। तो महिलाओं से ही समर्पित एक बहुत ही अच्छा गीत हम सुनते हैं, हमारे श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: बहुत ही प्यारा नगमा अभी हमने सुना, और देखिए ये प्यारा नगमा था और वैसे ही हमारा देश भी उन्नति कर रहा है, जैसे पंछी गगन को छू रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही है, वैसे ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो कि आज मनाया जा रहा है, प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। यह दिवस 11 मई 1998 में राजस्थान पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षणों, ऑपरेशन शक्ति और स्वदेशी विमान हंसा 3 की पहली उड़ान के उपलक्ष्य में तकनीकी प्रगति को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जिसका नेतृत्व तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। यह दिन भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को समर्पित है, जिसे पहली बार 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा घोषित किया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का महत्व परमाणु क्षमताओं से कहीं अधिक व्यापक है। यह भारत की निरंतर नवाचारशीलता और प्रौद्योगिकी का उपयोग व्यापक हित के लिए करने के लिए अटूट प्रतिबद्धता को याद दिलाता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रौद्योगिकी दिवस पे बताया पुष्पा, और इसके साथ ही आज कुछ और भी है क्योंकि आज 11 मई है और ये दिन हमें याद दिलाता है एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने अपने ज्ञान, साहस और देश प्रेम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी है।
0: बिल्कुल,
1: और आपको पता है पुष्पा हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आसफ अली की।
0: बिल्कुल,
1: जो केवल एक नेता नहीं थे बल्कि वे उस विचार के प्रतीक थे जिसमें भारत की एकता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र बसता था। 11 मई 1888 को दिल्ली में जन्मे आसफ अली ने प्रारंभिक शिक्षा के बाद कानून की पढ़ाई की और आगे चलकर देश के प्रसिद्ध वकीलों में गिने जाने लगे। उनकी बुद्धिमत्ता, स्पष्ट सोच और प्रभाव शाली व्यक्तित्व ने उन्हें समाज में अलग पहचान दिलाई, लेकिन उन्होंने केवल व्यक्तिगत सफलता का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने अपना जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया।
0: बिल्कुल सही कहा, महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 के दशक की शुरुआत में उन्होंने वकालत छोड़ दी और भारत लौट आए। अली ने अदालतों में राष्ट्रवादी नेताओं की मदद के लिए अपनी कानूनी कुशलता का इस्तेमाल करना फिर से शुरू किया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारी नेताओं का बचाव आसफ अली ने केंद्रीय विधानसभा भवन में बम फेंकने के आरोप में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जेल में कैद रहकर वे जवाहरलाल नेहरू सहित कांग्रेस की कार्यकारी समिति के सदस्यों में से थे जिन्होंने अहमदनगर किले में जेल बंद कर दिया गया। अली ने प्रशासनिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार के गठन के समय वे रेल मंत्री रहे। इस पद पर रहते हुए उन्होंने पहले कार्य रेल विभागों के लिए किया, जहां पर पानी की आपूर्ति को अलग अलग हो रही थी उसको एक करना था। अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन दोनों को में अली ने धार्मिक मतभेदों को त्याग कर सद्भावना को बढ़ावा देने का प्रयास किया। अली को महत्वपूर्ण राजनेता माना जाता था, उन्होंने 2 बार राज्यपाल के पद पर रहे और अपना बहुत ही अच्छा कार्यकाल उन्होंने निभाया।
1: बिल्कुल, आसफ अली का व्यक्तित्व हमें यह सिखाता है पुष्पा कि सच्चा देशभक्त केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से दिखाई देता है। देश के लिए त्याग, संघर्ष और ईमानदारी ही किसी व्यक्ति को महान बनाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले भारतीय राजदूत के रूप में कार्य किया। बाद में उन्हें स्विट्जरलैंड में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। 2 अप्रैल 1953 में बर्न में राजदूत के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान ही उनका निधन हो गया। 1989 में इंडिया पोस्ट ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया जिन्होंने उन्हें राजनेता के रूप में सम्मानित करने के लिए किया गया। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को भी रेखांकित किया गया।
1: बिल्कुल, ऐसे महान देशभक्त को, महान स्वतंत्रता सेनानी को, आसफ अली को शशत नमन हमारा। और इसी के साथ में आज एक और है क्योंकि 11 मई है और हम इतनी सारी जानकारियां अपने सखियों को दे रहे हैं, तो जय कृष्णमूर्ति जयंती भी आज हम मना रहे हैं, जिस

0: जिससे दुनिया को ये सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं हमारे भीतर जन्म लेती है।
1: बिल्कुल
0: कृष्णमूर्ति ने कहा कि जिस क्षण मन भय से मुक्त हो जाता है उसी क्षण जीवन का वास्तविक सौंदर्य दिखाई देता है। कृष्णमूर्ति जी ने किसी धर्म पंथ या विचारधारा का समर्थन नहीं किया बल्कि मनुष्य को स्वयं को समझने की राह दिखाई।
1: बिल्कुल सही कहा। वे एक विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक आध्यात्मिक वक्ता और लेखक थे जिन्होंने स्वयं को जानने, मानसिक क्रांति लाने और चेतना के रूपांतर पर जोर दिया। इन्होंने बुद्धि की प्रकृति, ध्यान और समाज में सकारात्मक परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सके उस पर कार्य किया। दर्शन जिन्होंने सत्य एक मार्ग रहित भूमि है इस सिद्धांत पर उन्होंने जोर दिया और किसी भी धर्म या संप्रदाय से बंधे बिना स्वयं के प्रति जागरूक होकर आंतरिक बदलाव में बल दिया। ये मानते थे कि मानव चेतना में बदलाव ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अगर इनके हम जन्म परिचय की बात करें तो जय कृष्णमूर्ति अपने माता पिता की 8वीं संतान के रूप में जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम कृष्णमूर्ति रखा गया। कृष्ण भी वासुदेव की 8वीं संतान थे और इनके पिता जिद्द नारायणिया ब्रिटिश प्रशासन में सरकारी कर्मचारी थे। जब कृष्णमूर्ति केवल 10 साल के थे तब इनकी माता संजीवामा का निधन हो गया और एनी बेसेंट ने जय कृष्णमूर्ति को किशोरावस्था में ही गोद ले लिया और उनकी परवरिश भी उसी प्रकार वो करने लगे।
0: बिल्कुल। और आपको पता है पुष्पा, मैं इसी में एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि कृष्णमूर्ति जी जो थे वो कहते थे कि जब मन दूसरों की अपेक्षाओं, भय, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा से मुक्त होता है तभी व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वह धर्म और आध्यात्म से ओतप्रोत थे और इसी वातावरण में वो पले बड़े थे। 1912 में उन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया और 1921 में वे वहां तक रहे और 1927 में एनी बेसेंट ने उन्हें विश्व गुरु घोषित किया, किंतु 2 वर्ष के बाद ही उन्होंने थियोसोफिकल विचारधारा से नाता तोड़ दिया। उनके विचार हमें बताते हैं कि हम अंदर से अतीत का बोझ और भविष्य का भय को हटा दें और अपने मस्तिष्क को मुक्त रखें, यानी कि हम वर्तमान में जिएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनकी शिक्षाओं का सार भी यही था कि मानवीय चेतना में बदलाव से ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने 60 से अधिक पुस्तकें लिखी। दर्शन और शिक्षा उनकी मुख्य रूप से रही। मानसिक स्वतंत्रता से वे उन्होंने काम किया, अंधविश्वास को उन्होंने मुक्त रखने से काम किया, स्वयं की खोज पर उन्होंने बल दिया। उनका मानना था कि सत्य का मार्ग बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। ये तो हम सभी जानते हैं, अगर हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं हमारी अंतरात्मा हमें बता देती है। उन्होंने कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के तहत ऐसे स्कूल स्थापित किए जो बिना डर के समग्र शिक्षा पर जोर देते थे।
0: बिल्कुल। और उन्होंने बोला कि उनकी दृष्टि में शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि स्वयं को समझने की कला है। आज उनकी जयंती पर यही प्रयास हो, हम दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को समझें, अपने भीतर शांति, संवेदनशीलता और जागरूकता को स्थान दें, क्योंकि एक जागरूक मन ही एक सुंदर और शांत समाज की शुरुआत कर सकता है।
1: बिल्कुल। उनके विचार आज भी हमारे समाज के लिए एक प्रेरणादायक है। जय कृष्णमूर्ति ने 91 वर्ष की आयु में 1986 को अमेरिका में देह छोड़ दी, लेकिन आज भी दुनिया भर की लाइब्रेरी में कृष्णमूर्ति के विचार जीवित है और हमारे बीच में उनके विचार जीवित है। उन्हें शत शत कोटि नमन करते हैं और हमारे श्रोताओं को सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: हीरो हीरोइन कॉमेडियन विलन का डायलॉग कोई बोले वाला।
1: अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे, बहुत नाइंसाफी है।
0: गोली छे और आदमी तीन। डिशम डिशम डिशम डिशम।

0: पुष्पा, इतना प्यारा हमने गीत सुना है, और पता है इस गीत में सिंगर्स के नाम है और कामयाब जो एक्ट्रेस है उनके नाम है, लेकिन वो नाम क्यों है कि वो अपने आप में एक पहचान है।
1: बिल्कुल,
0: है ना, क्योंकि हमने बात करी थी महिलाओं की जो राशन के डिब्बों से लेकर डिजिटल तक पहुंची है, तो उस गाने में ये था कि कितनी अच्छी अच्छी हमारे यहाँ पे एक्ट्रेस हैं, कामयाब एक्ट्रेस हैं, और उसके अलावा सिंगर्स हैं, और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं, महिलाएं उनमें आगे है, और तुम्हें पता है कि महिलाएं मार्केट में भी आगे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, और इतना मार्केट में आगे आ चुके हैं कि वाईफाई युक्त घरेलू उपकरण की बढ़ती मांग में उनकी बहुत ज़्यादा आगे
0: बिल्कुल हो चुकी क्योंकि है। घर की जो भी चीज़ें होती है ना, उसमें महिलाओं को पता होता है कि हमें कौन सी चीज़ें किस तरह की चाहिए जो हमारे काम को आसान कर दे।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज के भागदौड़ भरे जीवन में समय की बचत और सुविधा सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। यही कारण है कि भारतीय बाजारों में स्मार्ट या वाईफाई युक्त उपकरण की मांग तेजी से बढ़ रही है, जैसे एयर कंडीशन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और यहाँ तक कि बल्ब तक हमारे इंटरनेट के माध्यम से हमारे स्मार्टफोन से जुड़ गए हैं।
0: बिल्कुल, मांग में वृद्धि के कारण सुविधा और रिमोट कंट्रोल वाईफाई उपकरणों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इन्हें दुनिया के किसी भी कोने से नियंत्रित किया जा सकता है। इससे ऊर्जा की बचत भी होती है। स्मार्ट उपकरण बिजली की खपत पर नजर रखते हैं। कई उपकरण सेंसर आधारित होते हैं जो कमरे में किसी के न होने पर अपने आप बंद हो जाते हैं, जिससे बिजली बिल में कमी आती है।
1: बिल्कुल सही कहा, बदलती जीवन शैली और आय दोनों के लिए मध्यम वर्ग की आय को ठीक ठाक करने के लिए भी ये बहुत ही कारगर उपयोग में लिए जा रहे हैं। यह तकनीकी न केवल हमारे जीवन को आसान बना रही है बल्कि संसाधनों को बेहतर प्रबंधन में भी हमारी मदद कर रही है, जिससे कि हम हमारे सुरक्षा मानकों का ध्यान में रखते हुए उपकरणों का उपयोग करें तो यह स्मार्ट लिविंग की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। सखियों, श्रोताओं, हमारे को जाने की इच्छा नहीं हो रही है कि हम जाएं, लेकिन हम फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, दूसरों को हंसाते रहिए, योग को जीवन का हिस्सा बनाइए। आज के महिला जगत कार्यक्रम में थी मैं पुष्पा व्यास और

महिलाओं का खास कार्यक्रम महिला जगत अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत में बेहतरीन गीत। पहला गीत विकी डॉनर फिल्म से आयुष्मान खुराना की आवाज़ में।

विकी डोना फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं केके की आवाज़ में। कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत का।

गैंगस्टर फिल्म से अभी आपने गीत सुना, कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत का, आवाज़ ठीक है क्योंकि आइए सुनवाते हैं एक और प्यारा सा नगमा लव आजकल फिल्म से। आवाज़ें इसमें हैं नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की, संगीत लिखा है प्रीतम ने। आइए सुनते हैं एक और गीत।

बड़ा ही खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना लव आजकल फिल्म से। आइए आपको एक और गीत सुनवाते हैं कार्तिक की आवाज़ में, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। बड़ा ही प्यारा गीत है, सुनते हैं।

मुंबई से एक और ट्रैक आपको सुनवाते हैं. बड़ा ही प्यारा गीत है ये. आतिफ असलम की आवाज़ इसमें है और रुस्तम फिल्म का ये गाना है. इस कार्यक्रम का भी ये आखिरी गीत है.

इसी प्यारे से गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के ठीक 2:10 हो चुके हैं और आइए आपको सुनवाते हैं विकास चर्चा। विकास चर्चा में आज का विषय है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरे पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन मिलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से गरीब महिलाओं को जल्दी ही मिट्टी के चूल्हे से आजादी मिल जाएगी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह LPG के उपयोग को बढ़ावा देना है। योजना के एक मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना भी है। गरीब परिवार की महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस LPG कनेक्शन मुहैया कराने के लिए मंत्रिमंडल ने 8,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। नारा स्वच्छ ईंधन बेहतरीन जीवन। सरकार ने ईंधन के दाम बढ़ने पर मई 2022 में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी प्रदान की थी और अक्टूबर 2023 में से बढ़ाकर 300 रुपए तक कर दी थी। और केंद्र सरकार द्वारा घोषित LPG की कीमतों को कम करने का निर्णय व्यक्तियों पर वित्तीय तनाव को कम करने और उनके कल्याण को बढ़ाने के हमारे निरंतर प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कटौती आवश्यक वस्तुओं को किफायती दरों पर अधिक सुलभ बनाकर हमारे नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता देने के प्रति हमारे अटूट समर्पण को रेखांकित करती है। बात करें अगर आवेदन प्रक्रिया की कि हम किस तरीके से आवेदन करें तो उज्ज्वला योजना में रसोई गैस प्राप्त करने के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है। इसके लिए

बस आपके पास बीपीएल गरीबी रेखा का कार्ड होना आवश्यक है। इच्छुक उम्मीदवार जो इस योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन चाहते हैं, उन्हें योजना का आवेदन पत्र भरकर अपने नज़दीकी एलपीजी वितरण केंद्र में जमा कराना होगा। दो पन्ने के आवेदन पत्र में सभी जानकारी भरकर, जैसे आपका नाम, पता, आधार नंबर तथा जन धन बैंक खाता नंबर भरकर वितरण केंद्र पर जमा करवाना होगा। सभी जानकारी सही सही दर्ज करने के बाद आप इसे जमा कर देवें, जिसके बाद आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी तथा अन्य दस्तावेजों की जांच करके आपका आवेदन स्वीकृत कर दिया जाएगा। आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपको इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ भी प्रदान कर दिए जाएंगे। लिए बात करी हमने लाभ की, तो लाभ के बारे में हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभ हैं, इस योजना के प्रारंभ होने से खाने पर धुएं के असर से मृत्यु में कमी होगी। इस योजना से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की समस्याएं भी कम होगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रारंभ होने से शुद्ध जल के प्रयोग से महिलाओं का स्वास्थ्य सुधरेगा। इस सरकारी योजना से अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के प्रयोग करने वाले वातावरण में कम प्रदूषण होगा। इस योजना के शुरू होने से जंगलों की कटाई भी कम होगी और महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नहीं झेलना पड़ेगा। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, जो हमारी पर्यावरण के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है।

बात ये आती है कि अब हम किससे संपर्क करें। 1906 एलपीजी आपातकालीन हेल्पलाइन, 1800233355 टोल फ्री हेल्पलाइन पर हम कर सकते हैं। MOPNG ई सेवा तेल और गैस क्षेत्र के लिए आधिकारिक सोशल मीडिया आधारित शिकायत निवारण मंच भी इसमें हमारी बहुत अधिक सहायता करता है। अगर बात की जाए OMC नए LPG कनेक्शन के लिए, डुप्लीकेशन हटाने और उचित जांच पड़ताल के अन्य उपाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से करेंगे। यह योजना वितरण के सभी रूपों के तहत और विभिन्न आकारों के सिलेंडरों जैसे 14.2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम आदि के लिए BPL परिवारों को कवर करेगी, जो कि जमीनी स्थिति पर निर्भर भी करेगा। तो ये थी आज की विकास चर्चा, और विकास चर्चा में आज का जो विषय था वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना था। अब हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और वहां से हम सुनेंगे दोपहर समाचार। समाचार होंगे आपसे कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
1: मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को,

0: जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
1: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
0: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
0: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्षभर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसपोर्ट आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
1: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी

0: पतली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। देशभर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
2: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
3: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से ले।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा

0: की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुनते हैं किसान भाइयों का खास कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम भैरव भाई, राम राम।
1: राम राम रेखा भाई सर, राम राम।
0: कृषि जगत कार्यक्रम होनेवाला सगला किसान भाई बहना ने आपनो
1: राम
0: राम
1: राम,
0: राम
1: राम
0: सा।
1: सा।
0: देखो सा, कार्यक्रम रो टाइम भयो और आप हगला किसान भाई वास्ते जानकारी आज किसान की बात में लाया हूँ कि जो अत्यधिक गर्मी में फसल प्रबंधन वे वो आपने किस तरह करना चाहे सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो, आप अत्यधिक गर्मी और लू रे दौरान आप सब जाना कि फसलों ने बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती वे। तापमान यदि आप देखो 40 डिग्री रे पार हो जावे तो आप देखो पौधा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है बहुत धीमी हो जावे और नमी रो वाष्पीकरण भी बढ़ जावे। अब आप देखो गर्मी के प्रभाव ने कम करवारा कुछ उपाय और तकनीका है सा, वाह बात बताओ आप।
0: बिल्कुल सा, देखो सा, तकनीकारी अभी बात करा तो पहली बात करा कि सिंचाई रो सही समय और सही तकनीक कई वेणी चावे सा। तेज धूप में सिंचाई करो पानी जल्दी भाप बन जावे और पौधारी जड़ा में भी शोक लग जावे। तो अंडे वास्ते आपने जो सिंचाई करा वो सुबह जल्दी रे टाइम या पचे हांज में सूरज ढलवारे बाद ही करनी चाहे सा।
1: बिल्कुल सा। अंडे लाल लाल की ड्रिप सिंचाई पद्धति ने भी आप इस्तेमाल कर सको। यदि संभव है तो टपक सिंचाई रो प्रयोग करनो, यो सीधा पौधारी जड़ा तक पानी पहुंचे और जल संरक्षण में भी बहुत मदद करे सा।
0: देखो सा, फवारा विधि की बात करा तो दोपहर समय फवारा रो हल्को प्रयोग खेत में जो सूक्ष्म वातावरण वे वंडे तापमान ने भी 2 उंगली ने 5 डिग्री सेल्सियस तक का

0: वैसा
1: मोल्चिंग री बात करें यानी कि नमी संरक्षण री, तो आप देखो कि मिट्टी री सतह ने ढकणों, गर्मी में ढकणों सब वो प्रभावी तरीको है। जैविक मोल्चिंग यानी कि फसल रे अवशेष सूखी घास और पुआल ने कतार रे बीच में बिछाई देनो या मिट्टी रे तापमान ने बढ़वान तो रोके ही और नमी ने लंबा समय तक भी वणई राखे सा।
0: बिल्कुल सा। प्लास्टिक मल्चिंग री बात करा तो व्यावसायिक बागवानी वे वट

0: ढांचारी बात करें तो विंड ब्रेक है, यानी कि खेतरी उत्तर पश्चिमी दिशा में ने ऊंचा और घना पेड़ जहन की शीशम और देसी बबूल लगाऊं, गर्मी रा जो हवा और लूरो प्रभाव सीधो कम भई जावे।
1: बिल्कुल सा। और वनला रे अगर बात करा शेड नेट री, तो छोटी सब्जियां या नर्सरी रे वास्ते भी अभी 50% या पचे वणियों ज्यादा 75% वाला हरा नेट रो उपयोग अभी आपा कर सका सा।
0: अब कही एक मिट्टी स्वास्थ्य जुताई री भी बात करना, तो आप देखो गर्मियों में गहरी जुताई हूँ वजनों, क्योंकि अड़ू मिट्टी री निचली परता में ने नमी बिल्कुल खत्म भी जावे। अंडे लाल रे मिट्टी में जैविक खाद री बात करा तो वर्मी कंपोस्ट री पर्याप्त मात्रा डालनी, ताकि कार्बनिक पदार्थ पानी में पकड़ने आप देखो कि वे स्पंज री तरह काम करे सा।
1: देखो सा, आपी अणी तरीकों अगर आपी अणी गर्मी रे दना में अणी प्रकार अगर फसल रो प्रबंधन करांगा, तो आपी कही सका कि आवा वाला टाइम में अपनी फसला भी हाउ रहेगा सा। और यदि फसला हाउ रहेगा तो आपनो मन भी आनंद और प्रसन्न चित रहेगा। तो क्यों नहीं आपी अणी कार्यक्रम में आया हाँ, तो सगला किसान भाई बहनों भी आनंद करावा और एक होना रास्ता नहीं गीत
0: बिल्कुल सा हुणाओ।

0: तो देखो साहब, मेरा भाई यूँ तो हुने आप ही मनभावन राजस्थानी गीत, और अबे आपने कार्यक्रम ने और आगे ले चाला और आप ही बात करा कि भाई जो खेत में पानी रे जल भराव री समस्या वे वे
1: जी जी
0: विने आपा किस तरह दूर कर सका
1: सा। बिल्कुल सा, देखो कहिए कि खेत महीने देखो कतरी बार कहिए कि वर्करो पानी वे गयो या आसपास में नदी वे या तालाब रो पानी आई जावे और आप देखो को वणी टाइम आप देखो खेती बाड़ी जो वी थकी वे वह पूरी तरह खराब हो जाओ। और देखो खेत में जल भराव फसल रे वाते आनो बहुत हानिकारक है, जतरो इसकी सूखो हानि करे। अब आप देखो कि यदि मिट्टी रे छिद्रा महीने हवा रही जगह पानी भर जावे तो जड़ा ने ऑक्सीजन नहीं मिल पावे, जड़ी उबे सड़वा लागे और पोषक तत्वारो अवशोषण भी रुक जावे सा।
0: बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हो सा। अगर आप ये बात कर रहे हैं जल भरावरी, तो अंडी जो जल निकासी री उचित व्यवस्था है वहीं पे भी बात करा कि भाई जो खेत में अतिरिक्त पानी निकालवाने वास्ते सब सरल और सहज जो तरीको है वह सतह पे नालिया बनानो है सा। निकासी री जो नालिया आप बनाई रहा वे खेत रे चारों ओर ढाल रे अनुसार वच्चे वच्चे कच्ची नालिया आपने बनानी है। अड़ा नालियों जो मुख्य निकासी है वह बड़ा नाला या सुरक्षित तालाब में भी बेनी चावे सा।
1: बिल्कुल सा, अंडे लाल की ढाल रो प्रबंधन की बात करा तो आप देखो लेजर लैंड लेवलर रो उपयोग करने आप देखो खेत ने अणी तरह समतल करनो के हल्को सो ढाल जल निकासी बिंदुरी और रेवे सा।
0: बिल्कुल सा। और आप ही बात करा आप ही अगर अणी में उन्नत बुवाई री तकनीका है जो कि मिट्टी री सतह ऊपरे फसल लगाई ने भी आप ही जल भराव रे नुकसान ने काफी हद तक कम कर सका सा। मेड या जो बेड विधि वेवे फसला ने समतल जमीन रे बजाय उठी तक मेड़ पे लगानो है, जण्यू की भारी बारिश के दौरान भी जो पानी वेवे वो नालिया में नहीं रहेगा और पौधारी जड़ भी सुरक्षित रहेगा सा।
1: अंडे लाल देखो कि ब्रॉड बैंड फरोरी या तकनीक ऐसी है कि चौड़ी मेड़ा जो है वणाने वणानी वणारे बीच में गहरी नालियां छोड़ देनी और सिंचाई और जल निकासी दोयारो काम करे। अब अंडे लाल देखो कि एक यह बात भी जरूरी है कि मृदारी संरचना में सुधार यानी कि मिट्टी री जल सोखवारी क्षमता बढ़ करने आप देखो अणी समस्याओं आप लड़ सका सा।
0: बिल्कुल सा, अगर अणी में अगर सुधार आपने करना है कि तो जैविक खाद रो उपयोग आपने करना है, गोबरी खाद है, कंपोस्ट है, हरी खाद है, जैसे कि ढेचा वगैरह रो आपने प्रयोग करना है, या जो खाद है वह मिट्टी री संरचना ने भुरभुरो भी बनावे जणु की पानी रो रिसाव भी बेहतर वे सा।
1: अब देखो जिप्सम रो उपयोग करने भी आप एक अंडो समाधान कर सका, यदि मिट्टी आपरी शारी है और पानी नहीं सोख रही तो मिट्टी परीक्षण रे आधार पे जिप्सम डालनो और मिट्टी रे कणा ने खोले भी है यो।
0: बिल्कुल सा, देखो सा उप

0: तकनीक है वह विशेष रूप लवणीय मिट्टी री सुधार में बहुत कारगर है सा।
1: अब कई खेत तलई और रेन वाटर हार्वेस्टिंग री बात करा तो अतिरिक्त पानी में कई खेत में बाहर निकालवा रहे बजाय विने खेत रे निचला हिस्सा में एक तालाब बनाई ने इकट्ठो कर लेना चाहे।
0: देखो सा अनेक प्रकारों अपना किसान भाई बहन अगर खेत में जल भराव री समस्या मचनो है तो ये आप ही जो भी बात की दी वणी पे ध्यान देगा तो आप ही कह सका कि खेता में पानी बरों बच सकेगा सा। और कार्यक्रम में आया हाँ तो क्यों नहीं आप ही और राजस्थानी गीत अपना सगला किसान भाई बहनों ने हुनाई दा सा।
1: बिल्कुल हुनाओ सा।

0: तो देखो भैरव भाई, यो तो हुने मनभावन राजस्थानी गीत, और अब अपने कार्यक्रम ने और आगे बढ़ावा और सगला किसान भाई बहना ने बतावा कि जो फसल में पोषक तत्व वे बनारा फायदा कई कई वैसा।
1: बिल्कुल सर, देखो सब पहली बात बतावा तो फसल में आयरन वेगा तो आप देखो इल्ली बिल्कुल नहीं वेगा। दूसरी बात बतावा तो फसल में सल्फर वेगा तो फंगस बिल्कुल नहीं लगेगा।
0: बिल्कुल हाँ जी बात कह रहा हो सा। अगर आप ही बात करा कि फसल में जिंक वेगा तो कोई भी वायरस रो प्रकोप भी नहीं वेगा। फसल में अगर कैल्शियम वेगा तो आपने जो रस चूसक कीट वेवे वी भी नहीं आएगा सा।
1: बिल्कुल सा, और फसल में अगर बोरान कैल्शियम नहीं वेगा तो आप देखो कोपला नहीं आएगा और फूल नहीं आएगा और फल अच्छी तरह पकेगा भी नहीं। अंडे अलावा कि फसल में पोटास नहीं वेगा तो फसल में आप देखो कि जो फल है कम लगेगा और फल छोटा रह जाएगा सर।
0: बिल्कुल सा, और फसल में अगर सल्फर नहीं वेगा तो आप कहवा कि जो सल्फर वेगा तो फंगस नहीं लगेगा। फसल में तांबा मैगजीन वेगा तो बैक्टीरियल ब्लास्ट जैसी जो बीमारी वेवे वह भी नहीं वेगा। और अब आज के टाइम में अगर आप ही देखा तो मिट्टी की जो ऊपरी सतह है वहीं में जो खनिज तत्व नहीं वेवे तो अणा वास्ते भी अणा फसला में बीमारियाँ वेरी सा। तो अंडे वास्ते अपने खनिज तत्व की कमी ने दूर करवा वास्ते भी अपने फसल की उपज अपने गिरती तका दिखे तो अंडे वास्ते अपने जो भी ये जो पोषक तत्व है अंडो समय समय पे आपने उपयोग करता रहना ऐसा।
1: बिल्कुल सा, और देखो फसल में आप देखो फास्फोरस नहीं वेगा तो पत्ता जो है वे टेढ़ा मेढ़ा आएगा और फसल की ऊंचाई नहीं वेगा। और अंडे अलावा कि फसल में जिंक सल्फर नहीं वेगा तो फला में स्वाद नहीं आएगा सर।
0: बिल्कुल सा, आप ही सब जाना कि भाई आप ही खेती बाड़ी करा। हाँ, और देखो गर्मी हरा मौसम चल रहे हो तो हर सीजन में वनडे हिसाब वो आपने जो भी पानी पिलानो है, सिंचाई करनी है या पचे अपनी फसला ने पोषक तत्व देनो है और सीमित और उचित मात्रा में अगर आप ही अना रो ध्यान रखने अगर अपनी फसला ने दांगा तो आप ही कह सका कि अपनी फसला हाउ वेगा सा, दो पैसा री आमदनी भी अपने हाउ मिलेगा। और लारे लारे अगर आप ही बात करा कि भाई जो आपा खावा तो वणी में भी अपनी पौष्टिकता और अपनी सेहत भी वणी तकी रहेगा सा।
1: जी सा, और अबे आपको तो एक अच्छो सो प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत और होने दा सा।
0: हाँ सा।

कृषि जगत, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। दोपहर के 3 बजने को है, जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और वहां से हम सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को यह याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई सरकार गठित होने के बाद आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की घोषणा की। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भटियात उपमंडल में पर्यटकों को ले जा रहे एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 बच्चों सहित 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में गुजरात के 5 पर्यटक थे, जबकि चालक हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का निवासी था। ये दुर्घटना आज तड़के काकिरा लाहरू सड़क पर हुई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 जी रामजी के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अधिनियम में

0: कार्यस्थल पर बच्चों की देखभाल के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है। इस बीच वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक की अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में छिटपुट बारिश, गरज बिजली और तेज हवाओं का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज और कल छिटपुट ओलावृष्टि की भी संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडिया वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:05 हो चुके हैं। हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा के प्रसारणों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की शांतिकालीन सभा अब आरंभ होती है। आइए सभा की शुरुआत में हम सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: शब्दों की खुशबू हो, सपनों की उड़ान हो, हर दिल में नई उम्मीद और हर आवाज़ में हिंदुस्तान हो, तरंगों पर सजे एहसासों का ये कारवां फिर लेकर आया है युवाओं की अपनी महफिल युववाणी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा।
1: मैं हूँ नेहल
0: और आप सुन रहे हैं युववाणी। कभी सोचा है नेहल कि एक आवाज़, एक खोज, एक सपना और एक कहानी पूरी पीढ़ी को बदल सकती है?
1: मतलब आज कुछ खास होने वाला है,
0: क्योंकि आज की युवाणी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, एक ऐसा सफर है जहां इतिहास भी सांस लेगा, विज्ञान भी नए सपने दिखाएगा और आवाजें दिलों से जुड़ती चली जाएगी।
1: आज बात होगी 19 सालों से दिलों को जोड़ती आकाशवाणी की, जहां कभी किसी युवा ने पहली बार माइक पकड़ा तो कभी किसी आवाज ने पूरे देश को उम्मीद दी।
0: आज हम महसूस करेंगे नेशनल टेक्नोलॉजी डे का जोश, जहां सपने साइंस बनते हैं और इंडिया आइडियाज भविष्य की पहचान।
1: और हम चलेंगे इतिहास के उन रास्तों पर भी जहां पुराने किले, विरासत और कहानियां आज भी बीते समय की गूंज सुनाते हैं।
0: और साथ ही होंगे महान हस्तियों के जन्मदिन, आज के इतिहास के दिलचस्प किस्से, स्पोर्ट्स की दुनिया का एक्साइटमेंट और शेयर मार्केट की हलचल भी।
1: तो दोस्तों, अपने दिल और अपनी सोच की फ्रिक्वेंसी को ट्यून कर लीजिए,
0: क्योंकि अगले कुछ पलों में शब्द सिर्फ सुनाई नहीं देंगे, महसूस भी होंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं युवाओं की आवाज़, युवाओं की पहचान, युववाणी।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: बिल्कुल दोस्तों, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आकाशवाणी के पूरे 90 वर्ष और इस पर भी आपसे चर्चा होगी, इस पर भी खूब सारी बातें हम लेकर आए हैं आपके लिए। पर आज हम सबसे पहले आपको आज के दिन का की जो खास बात है वो बताएंगे और आज के दिन की खास बात क्या है वो अब शुरू करते हैं। नेहल, कभी रेगिस्तान की रेत में एक ऐसा इतिहास लिखा गया था जिसकी गूंज सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दी थी।
2: और उस दिन भारत ने सिर्फ अपनी ताकत नहीं दिखाई बल्कि साबित किया कि सपने बड़े हो तो टेक्नोलॉजी भी राष्ट्र की पहचान बदल सकती है।
1: बिल्कुल दोस्तों, हर साल 11 मई को भारत में नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। यह दिन 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों की याद में मनाया जाता है जब भारत ने सफल न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को अपनी वैज्ञानिक क्षमता का एहसास कराया था।
2: और इस मिशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। और इस ऐतिहासिक उपलब्धि में भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की मेहनत ने देश को एक नई पहचान दी।
1: बिल्कुल, और जब भी इस दिन की बात होती है एक नाम अपने आप हमारे जहन में आ जाता है और वो नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
2: दोस्तों, एक साइंटिस्ट, एक विजनरी और करोड़ों युवाओं के इंस्पिरेशन। उन्होंने सिर्फ मिसाइल्स नहीं बनाए बल्कि उन्होंने युवाओं को सपने देखने सिखाए हैं।
1: उनकी एक बात आज भी हर युवा को मोटिवेट करती है। ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, ड्रीम इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। यानी कि आप सोते हुए जो भी देखते हैं वो सपना नहीं है, सपना तो वो है जो आपको सोने ही ना दे।
2: और शायद यही नेशनल टेक्नोलॉजी डे का असली मैसेज भी है, ड्रीम बिग क्रिएट बिगर।
1: आज टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन्स तक सीमित नहीं रही है, आज की जो टेक्नोलॉजी है वो एजुकेशन बदल रही है, हेल्थ केयर को नई दिशा दे रही है और फार्मिंग बदल रही है, और सबसे बड़ी बात युवाओं के करियर अपॉर्चुनिटीज़ को भी बदल रही है।
2: बिल्कुल सही कहा, आज कोई AI बना रहा है, कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा है, कोई ऐप डेवलप कर रहा है, तो कोई स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया का नाम रोशन कर रहा है।
1: और सबसे इंस्पायरिंग बात तो ये है नेहल कि आज का भारतीय युवा सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहा बल्कि टेक्नोलॉजी को क्रिएट भी कर रहा है।
2: और यही न्यू इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है, इनोवेशन

0: और अब सिर्फ सिटीज तक सीमित नहीं रहे बल्कि
1: बिल्कुल
0: छोटे टाउन्स और विलेजेस के लिए युवा की नई आइडियाज लेकर आ गए हैं।
1: बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी का असली मतलब सिर्फ एडवांसमेंट नहीं होता, बल्कि लोगों की जिंदगी को और बेहतर बनाना होता है।
0: और भारत में कई टेक्नोलॉजीज आज सोशल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही है, जैसे डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन हेल्थ केयर, डिजास्टर वार्निंग सिस्टम्स, यूपीआई पेमेंट्स और स्मार्ट एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस।
1: यानी टेक्नोलॉजी सिर्फ गैजेट नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। दोस्तों, अगर आपके पास एक आइडिया है तो उसे छोटा मत समझिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई बार एक छोटा सा इनोवेशन पूरे देश का फ्यूचर बदल देता है।
0: और याद रखिए, टेक्नोलॉजी सिर्फ कोडर्स या साइंटिस्ट के लिए नहीं है। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है और अगर कुछ नया करने का जज्बा है, तो टेक्नोलॉजी की दुनिया आपके लिए भी खुली है।
1: जब सपनों को विज्ञान का साथ मिला, तब भारत ने नया आकाश छू लिया। 11 मई सिर्फ एक तारीख नहीं, आत्मनिर्भर भारत के विश्वास का दिन है।
0: तो आइए दोस्तों, नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर उन सभी साइंटिस्ट, इनोवेटर्स और युवाओं को सलाम करें जो भारत को भविष्य की ओर ले जा रहे हैं।
1: क्योंकि आने वाला भारत टेक्नोलॉजी से बनेगा और उसे बनाएंगे आज के युवा। और दोस्तों, जब बात हुई है टेक्नोलॉजी की, तो क्यों ना नेहल, हमारा आज का जो स्पेशल सेगमेंट है हमारे दोस्तों के लिए, साइंस एंड टेक, उसे भी स्टार्ट किया जाए और उसमें बताया जाए कि आज ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजी जो कि हम रोज देख रहे हैं और उसके बारे में हमें पता नहीं है।
0: प्रेरणा, क्रिकेट का मैदान हो और एक्साइटमेंट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या आप लोगों ने सोचा है कि आज का क्रिकेट इतना स्मार्ट और हाईटेक कैसे बन गया है?
1: बिल्कुल। अब खेल सिर्फ बैट और बॉल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसमें जान डाल दी है। और आज हम बात करने वाले हैं उसी अमेजिंग इनोवेशन की, जिंग विकेट टेक्नोलॉजी।
0: जी हाँ दोस्तों, ये वो ही टेक्नोलॉजी है जिसमें जैसे ही गेंद स्टंप्स को छूती है, जिंग को और लाइट्स तुरंत जल उठती है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम जानेंगे कि ये छोटी सी दिखने वाली टेक्नोलॉजी किस कैसे बड़े बड़े डिसीजंस को इजी और एक्यूरेट बना देती है।
1: पर नेहल, पहले तो ये बताओ कि ये जिंग विकेट आखिर है क्या?
0: प्रेरणा, जिंग विकेट टेक्नोलॉजी असल में एक नई हाईटेक स्टंप सिस्टम है जिसमें LED लाइट्स और सेंसर्स लगे होते हैं। जैसे ही गेंद स्टंप या बेल्स को छूती है, ये तुरंत चमक उठते हैं, यानी जिंग।
1: तो इसका मतलब ये सिर्फ शो ऑफ नहीं है बल्कि काम का भी है।
0: बिल्कुल काम का है। पहले कई बार ऐसा होता था कि समझ ही नहीं आता था कि बॉल गिरी है या नहीं, खासकर क्लोज रन आउट्स या स्टंपिंग में। लेकिन अब जिंग विकेट के सेंसर्स ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि बॉल कब कांटेक्ट में आई है।
1: यानी अब फैसले और भी सटीक हो गए हैं। और दोस्तों, यही नहीं, इस टेक्नोलॉजी में माइक्रो प्रोसेसर्स भी लगे होते हैं जो बहुत ही शॉर्ट समय में, यानी कि हम सोच भी नहीं सकते, या हम यूँ कहें कि हम पलक भी झपकाते हैं ना, उससे जल्दी जल्दी ये काम कर लेते हैं। तो इससे होता ये है कि एम्पायर को डिसीजन लेने में आसानी होती है और ये सिस्टम जो आउट हुआ है या जो नहीं आउट हुआ है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है।
0: मतलब टेक्नोलॉजी ने क्रिकेट को ऑलमोस्ट फ्यूचरिस्टिक बना दिया है। और दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी पहली बार एक बड़े लेवल पर यूज़ हुई थी बिग बैश लीग में और फिर धीरे धीरे इंटरनेशनल मैचेस में भी आ गई।
1: तो अब जब भी हम मैच देखते हैं, स्टंप्स चमकते हैं, उसके पीछे इतनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी काम कर रही है, ये आप सभी को पता है।
0: सही कहा। और ये सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं बढ़ाती बल्कि फेयरनेस भी सुनिश्चित करती है, जो कि स्पोर्ट्स में सबसे ज़रूरी है।
1: बिल्कुल दोस्तों, यही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कमाल, जहां इनोवेशन खेल को और भी रोमांचक बना देता है और हमें यह सिखाता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ गैजेट्स तक सीमित नहीं है बल्कि हर फील्ड में बदलाव ला रही है।

0: आप सबको जय नारायण, जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप
1: दोस्तों? अब हम आपको ले चलते हैं इतिहास की एक ऐसी जगह पर जहां पत्थरों में भी कहानियां सांस लेती हैं। जी हां, हम बात करने वाले हैं बुद्धाज ऑफ बामियान की, एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर जो कभी दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमाओं के लिए जानी जाती थी।
2: बिल्कुल, ये बुद्धाज ऑफ बामियान आखिर है कहाँ और इसकी खासियत क्या है?
1: ये स्थल अफगानिस्तान की बामियान घाटी में स्थित था। यहाँ पहाड़ों को काटकर दो विशाल बुद्ध प्रतिमाएं बनाई गई थी, एक लगभग 55 मीटर और दूसरी करीब 38 मीटर ऊंची। जरा सोचिए दोस्तों, अगर उस समय इतनी भव्य कला बनाना कितना अद्भुत रहा होगा।
2: यानी ये सिर्फ मूर्तियां नहीं थी बल्कि कला और आस्था का संगम थी। ये प्रतिमाएं लगभग 6वीं शताब्दी में बनाई गई थी और ये बुद्धिज्म के प्रभाव को दर्शाती थी। उस समय बामियान सिल्क रोड एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था जहां से व्यापारी और यात्री गुजरा करते थे।
1: लेकिन प्रेरणा, मैंने सुना है कि अब ये प्रतिमाएं मौजूद नहीं है क्योंकि 2001 में ताइवान ने इन ऐतिहासिक मूर्तियों को नष्ट कर दिया था और ये घटना दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक नुकसान थी। प्रेरणा, ये सुनकर सच में दुख होता है, लेकिन क्या आप आज वहाँ कुछ बचा है?
2: जी हाँ, आज की बात करें तो आज भी उन प्रतिमाओं के अवशेष, और यूं कहें कि जहाँ वो प्रतिमाएं थी वहाँ पर कुछ खाली जगह, कुछ खांचे आज भी मौजूद हैं और हमें उस महान इतिहास की याद दिलाते हैं। अभी की बात जब हम कर रहे हैं तो अब यूनेस्को इस स्थल को संरक्षित करने की कोशिश कर रहा है ताकि इसकी विरासत हमेशा जीवित रह सके।
1: तो दोस्तों, बुद्धाज ऑफ बामियान हमें ये सिखाते हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता बल्कि हमारी संस्कृति और धरोहर में बसता है, और ये भी कि हमें अपनी विरासत को संभाल कर रखना कितना ज़रूरी है क्योंकि एक बार खो जाने पर उसे वापस लाना बहुत मुश्किल है।

0: दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ दुनिया जीतने निकला एक महान विजेता और दूसरी तरफ अपनी धरती की रक्षा करने के लिए डटा एक वीर राजा। जी हाँ, तो अब हम बात करेंगे इतिहास की एक बेहद रोमांचक लड़ाई, हाइडेस्पिस जंग की।
1: दोस्तों ये कहानी है 326 ईसा पूर्व की, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी विशाल सेना के साथ भारत की धरती पर पहुंचा। उसका सामना हुआ एक बहादुर भारतीय राजा पोरस से, जो झेलम नदी के किनारे डटकर खड़े थे।
0: झेलम नदी, जिसे उस समय हाइडेस्पिस कहा जाता था, दोनों सेनाओं के बीच एक बड़ी चुनौती थी कि बारिश का मौसम, उफनती नदी, लेकिन सिकंदर ने चालाकी से रात के अंधेरे में नदी पार की और अचानक हमला कर दिया।
1: और अब सोचिए, एक तरफ यूनानी सेना की रणनीति और दूसरी तरफ राजा पोरस के हाथी और उनकी बहादुरी। युद्ध बेहद भयंकर था, लेकिन पोरस ने अंत तक हार नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत से लड़े।
0: लेकिन सबसे दिलचस्प पल तब आया जब युद्ध के बाद सिकंदर ने पोरस से पूछा, बताओ तुम्हारे पास साथ कैसा व्यवहार किया जाए। और पोरस का जवाब था, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस जवाब ने सिकंदर को इतना प्रभावित किया कि उसने पोरस को उनका राज्य वापस दे दिया।
1: तो दोस्तों ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था सम्मान, बहादुरी और आत्मसम्मान की मिसाल। बैटल ऑफ हाइडेस्पिस आज भी हमें सिखाती है कि सच्ची जीत सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि हिम्मत और सम्मान से मिलती है।

0: दोस्तों अब बात करते हैं सरदारी लाल नंदा की। ये भारतीय नौसेना के एक एडमिरल थे। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1915 को मनोरा कराची ब्रिटिश भारत में हुआ था।
1: बिल्कुल, इनके माता पिता पंजाब प्रांत के गुजरावाला के पास के गांव से थे। उनका जन्म एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण कराची बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर स्थित मनोरा द्वीप पर हुआ।
0: नंदा ने अपने करियर की शुरुआत दीपावली पर 6 महीने के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से की। इसके बाद उन्हें कलकत्ता भेजा गया और उन्हें वहां एक नदी स्टीमर की कमान संभालने और सुंदरबन में गश्त करने का आदेश दिया गया।
1: बिल्कुल दोस्तों, इन्हें भारत की स्वतंत्रता के बाद कावेरी का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया और 1948 में उन्हें प्रमुख युद्धपोत HMIS दिल्ली C-74 का प्रथम लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया था।
0: और 1971 में इन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना का नेतृत्व किया और पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान दोनों की नौसैनिक नाकाबंदी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिससे भारत को युद्ध में एक बड़ी जीत हासिल करने में मदद मिली।
1: और दोस्तों, युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया। साथ ही साथ इन्हें दिए गए अन्य पुरस्कारों की भी बात करें तो एक परम विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से भी इन्हें नवाजा गया है।
0: नंदा को भारतीय नौसेना के इतिहास में सबसे उल्लेखनीय कमांडरों में से एक माना जाता है और 11 मई यानी आज के दिन 2009 में न्यू दिल्ली के में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
1: बिल्कुल, और आइए अब एक और हस्ती की बात करते हैं और इस हस्ती के लिए हम आपको लेकर चलेंगे जासूसी की उस दुनिया में जहां सच और झूठ के बीच की रेखा बहुत ही धुंधली हो जाती है,
0: और उस दुनिया का एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, किम फिल्बी, एक ऐसा शख्स जो बाहर से ब्रिटिश अधिकारी था लेकिन असल में कुछ और ही कहानी थी।
1: मतलब फिल्बी डबल लाइफ जी रहे थे?
0: बिल्कुल, किम फिल्बी ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 के एक बड़े अधिकारी थे लेकिन असल में वो सोवियत यूनियन के लिए जासूसी कर रहे थे।
1: ये तो सच में एक फिल्मी कहानी जैसा लग रहा है। और सच में उन्होंने सालों तक ऐसी जानकारी सोवियत यूनियन को दी जिससे कई बड़े ऑपरेशंस फेल हो गए। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि किसी को उन पर शक भी नहीं हुआ। पर एक बात मन में आती है नेहल, कि उनका ये जो राज था वो खुला कैसे?
0: प्रेरणा, जब धीरे धीरे शक बढ़ने लगा तो 1963 में वो अचानक गायब हो गए और बाद में पता चला कि वो सोवियत यूनियन भाग गए।
1: यानी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक रहस्य बनाकर रखी और यही वजह है कि उन्हें आज भी दुनिया के सबसे बड़े डबल एजेंट्स में गिना जाता है।
0: और आखिरकार किम फिल्बी 11 मई 1988 को इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी कहानी आज भी जासूसी की दुनिया में एक मिसाल बनी हुई है।
1: जी बिल्कुल, और अब हम एक ऐसी भारतीय शख्सियत की बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है दोस्तों, और उनके लिए हम ये कहेंगे कि उन्होंने सिर्फ नृत्य को जिया नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को भी अपनी सांसों में बसा लिया था।
0: जी हाँ, जब भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बात होगी एक नाम हमेशा सम्मान से लिया जाएगा, मृणालिनी साराभाई, एक ऐसी कलाकार जिसकी कला में परंपरा भी थी और समाज के लिए संदेश भी।
1: दोस्तों 11 मई 1918 केरल में जन्मी मृणालिनी साराभाई का बचपन काफ़ी अलग माहौल में बीता। उनकी माता अम्मू स्वामीनाथन स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी थी, लेकिन समाज और देश के लिए कुछ करने की सोच उन्हें बचपन से ही मिली
0: और शायद इसी वजह से उन्होंने अपनी कला को सिर्फ स्टेज परफॉर्मेंस बनाकर नहीं छोड़ा बल्कि उसे समाज की आवाज़ बना दिया।
1: उन्होंने स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की, फिर शांति निकेतन पहुंची जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों ने उनकी सोच को और गहराई दी।
0: उसके बाद शुरू हुआ उनका असली सफ़र, भरतनाट्यम की ट्रेनिंग महान गुरु मीनाक्षी सुंदर राम पिलाई से और कथकली की शिक्षा गुरु कुंजु कुरुपु जैसे दिग्गजों से ली।
1: बिल्कुल दोस्तों, सोचिए उस समय जब महिलाओं के लिए कला के क्षेत्र में पहचान बनाना इतना आसान नहीं था, तब मृणालिनी जी ने पूरी दुनिया में भारतीय नृत्य की अलग पहचान बनाई।
0: उन्होंने यूरोप, अमेरिका और कई देशों में परफॉर्मेंस दी और दुनिया को बताया कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य सिर्फ कला नहीं, एक भावना है, एक कहानी।

0: दोस्तों 1949 में उन्होंने अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की। आज भी ये संस्था कला, थिएटर, लोक संस्कृति और सामाजिक जागरूकता के लिए काम कर रही है।
1: और सबसे खास बात, उन्होंने अपने डांस ड्रामास में महिलाओं के अधिकार, दहेज प्रथा, पर्यावरण और मानव अधिकार जैसे मुद्दों को उठाया।
0: यानी मंच पर सिर्फ संगीत और नृत्य नहीं था, समाज को बदलने की कोशिश भी थी।
1: उनकी मेहनत और योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1992 में पद्मश्री और बाद में साल 1965 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
0: लेकिन दोस्तों सच कहें तो उनका सबसे बड़ा अवार्ड वो सम्मान था जो हर कलाकार और हर भारतीय उनके नाम से महसूस करता है।
1: और एक दिलचस्प बात, वो महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी थी। यानी एक ऐसा परिवार जहां एक तरफ अंतरिक्ष विज्ञान था और दूसरी तरफ भारतीय कला की आत्मा।
0: और दोस्तों उनकी बेटी मल्लिका साराभाई ने भी इसी विरासत को आगे बढ़ाया है और वे आज भी कला और सामाजिक मुद्दों के लिए सक्रिय हैं।
1: कुछ कलाकार सिर्फ परफॉर्म नहीं करते, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बन जाते हैं।
0: और मृणालिनी जी उन्हीं नामों में से एक थी जिनकी पायल की आवाज़ आज भी भारतीय संस्कृति में गूंजती है।

0: AIR at 90. यह आकाशवाणी है दोस्तों। इन शब्दों में सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं बल्कि 90 सालों का इतिहास, भावनाएं और लाखों कहानियां छिपी हुई है।
1: और सच कहें तो हर पीढ़ी का रेडियो से अपना अलग रिश्ता है। किसी के लिए रेडियो बचपन की याद है, किसी के लिए संगीत का साथी और किसी के लिए सपनों का आवाज देने वाला मंच।
0: रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो जाता था, तब किसी घर के कोने में रखा एक छोटा सा रेडियो जाग रहा होता था। कहीं कोई छात्र पढ़ाई करते हुए गाने सुन रहा होता, कहीं दादी समाचार सुन रही होती, तो कहीं कोई युवा अपने सपनों के साथ पहली बार किसी आरजी की आवाज़ से इंस्पायर हो रहा होता।
1: और सोचिए, एक ऐसा माध्यम जो ना दिखाई देता है, न टच किया जा सकता है, फिर भी दिलों से गहरा कनेक्शन बना लेता है, वो है रेडियो।
0: दोस्तों, इस साल आकाशवाणी अपने 90 गौरवशाली वर्ष पूरे कर रही है। 90 साल यानी लाखों आवाजें, करोड़ों श्रोता, अनगिनत कहानियां और देश के हर कोने तक पहुंचने वाला भरोसा।
1: जी हाँ, आकाशवाणी सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नहीं रही, ये भारत की धड़कन रही है। आजादी के समय लोगों तक खबरें पहुंचानी हो, देशभक्ति जगानी हो, कला और संस्कृति को बचाना हो या युवाओं को मंच देना हो, आकाशवाणी हर दौर में देश के साथ खड़ी रही।
0: नेहल, एक बात बताऊं, आज भी जब कोई कहता है यह आकाशवाणी है तो एक अलग ही बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग आती है।
1: बिल्कुल, जैसे अचानक बचपन की यादें लौट आती है। सुबह सुबह समाचार, फरमाइश, गीत, क्रिकेट कमेंट्री और वो सिग्नेचर ट्यून।
0: दोस्तों, आज की जनरेशन ने टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से बदलते देखा है, वॉकमैन से स्मार्टफोन तक, कैसेट से स्ट्रीमिंग एप्स तक। लेकिन एक चीज जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है वो है रेडियो।
1: क्योंकि रेडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देता, वो कंपेनशिप देता है। जब कोई अकेला होता है तो रेडियो उसका दोस्त बन जाता है। जब कोई परेशान होता है तो किसी आरजे की हंसी मूड बदल देती है। और जब कोई अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा होता है तो कोई मोटिवेशनल उसे फिर से खड़ा कर देता है।
0: आज का युवा सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं करना चाहता, वो अपनी आवाज़ भी दुनिया तक पहुंचाना चाहता है और यही काम रेडियो सालों से करता आ रहा है।
1: जी हाँ, युवाओं को एक्सप्रेशन देना, उनकी क्रिएटिविटी को मंच देना, उनके आइडियाज़ को पहचान देना, यही रेडियोज़ की असली ताकत है।
0: और अगर यूथ और रेडियो की बात हो तो युवाणी का नाम जरूर आता है। कितने ही स्टूडेंट्स ने पहली बार यहाँ माइक पकड़ा, पहली बार अपनी कविता पढ़ी, पहली बार अपनी आवाज़ हेडफोन्स में सुनी और उसी दिन उन्हें लगा, हाँ, मेरी आवाज़ भी मायने रखती है।
1: कुछ लोग यहीं से आरजी बने, कुछ लोग एंकर्स बने, कुछ राइटर्स बने और कुछ तो बस इतना कॉन्फिडेंस मिला कि वो जिंदगी खुलकर बोल सके।
0: दोस्तों, रेडियो आपको सिर्फ बोलना नहीं सिखाता, ये आपको सुनना भी सिखाता है, रिस्पेक्ट करना सिखाता है, थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करना सिखाता है
1: और सबसे ज़रूरी, ये आपको रियल रहना सिखाता है। यहाँ फिल्टर्स नहीं चलते, यहाँ सिर्फ आपकी आवाज़ और आपकी सच्चाई काम आती है।
0: आज कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस भी यूथ एम्पावरमेंट में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। छोटे गांवों, कस्बों और दूर दराज के इलाकों तक जहाँ शायद इंटरनेट की स्पीड धीमी हो, लेकिन रेडियो की आवाज़ अब भी तेज़ी से पहुँचती है।
1: कई युवाओं को करियर गाइडेंस दी जा रही है, कई वुमेन एम्पावरमेंट पर प्रोग्राम्स बना रहे हैं, कई हेल्थ अवेयरनेस पर, तो कहीं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर डिस्कशन।
0: और सबसे इंस्पायरिंग बात पता है क्या है, कई कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस में लोकल यूथ

0: खुद कंटेंट बनाते हैं, मतलब अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने मुद्दे और अपनी कहानियाँ खुद दुनिया तक पहुँचाते हैं।
1: यानी रेडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा बल्कि लीडरशिप पैदा कर रहा है।
0: आज रेडियो ने खुद को नए समय के साथ बदल भी लिया है। अब पॉडकास्ट हैं, ऑनलाइन रेडियो है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मैजिक आज भी वही है, आवाज़ का जादू।
1: और आज का युद्ध इस स्पेस में कमाल कर रहा है। कोई हिस्ट्री स्टोरीज सुना रहा है, कोई मेंटल हेल्थ पर बात कर रहा है, कोई स्टार्टअप जर्नी शेयर कर रहा है, तो कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज

0: इस स्पेस में कमाल कर रहा है, कोई हिस्ट्री स्टोरीज सुना रहा है, कोई मेंटल हेल्थ पर बात कर रहा है, कोई स्टार्टअप जर्नी शेयर कर रहा है, तो कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा रहा है।
1: दोस्तों, कई बार मोटिवेशन किसी बड़े सेमिनार से नहीं मिलता, बस किसी अनजान आवाज़ की एक लाइन जिंदगी बदल देती है।
0: जैसे हार मत मानो, तुम कर सकते हो, तुम्हारी आवाज़ ज़रूरी है, और रेडियो सालों से यही कॉन्फिडेंस लोगों तक पहुंचा रहा है।
1: जब दुनिया पैंडेमिक से गुजर रही थी, तब भी रेडियो लोगों तक इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस और होप पहुंचा रहा था। जब लोग अकेले थे, रेडियो उनके साथ था। जब स्कूल्स बंद थे, रेडियो पढ़ाई पहुंचा रहा था। और जब लोग युद्ध के समय में डर रहे थे, तब रेडियो उन्हें भरोसा दे रहा था।
0: दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर लाखों वीडियोस हैं, लेकिन रेडियो का कनेक्शन अलग है, क्योंकि यहाँ का कंपटीशन कम है, कनेक्शन ज़्यादा होता है।
1: यहाँ वायरल होने की नहीं, दिल तक पहुँचने की बात होती है।
0: अगर आप युवा हैं तो आपको लगता है कि आपकी आवाज़ छोटी है, तो रेडियो से सीखिए। एक आवाज़ पूरा समाज बदल सकती है।
1: अगर आपके पास टैलेंट है, थॉट्स हैं, क्रिएटिविटी है, तो उसे दबाइए मत, क्योंकि शायद आपकी आवाज़ किसी दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। 90 साल पहले शुरू हुई ये आवाज़ आज भी उतनी ही ताज़ा है, क्योंकि रेडियो टेक्नोलॉजी से नहीं, इंसानी एहसासों से चलता है।
0: और जब तक सपने देखने वाले युवा रहेंगे, तब तक रेडियो भी रहेगा उनके साथ, उनकी आवाज़ बनकर।
1: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को युववाणी का नमन। आवाज़ जो दिलों को जोड़ती रही और जोड़ती रहेगी।

0: दोस्तों, कुछ तारीखें इतिहास की किताबों में सिर्फ लिखी नहीं जाती बल्कि पूरी दुनिया की सोच बदल देती है, और 11 मई एक ऐसी ही तारीख है।
1: कई इस दिन विज्ञान ने नई उड़ान भरी, कई संगीत ने दुनिया को धुन दी, और कई एक देश ने पूरी दुनिया के सामने अपना आत्मविश्वास साबित किया। तो चलिए दोस्तों, आज के इतिहास के सफर पर चलते हैं।
0: दोस्तों, 11 मई दुनिया की म्यूजिक हिस्ट्री के लिए बेहद खास माना जाता है। आज ही के दिन 1888 में जन्म हुआ था महान कंपोजर और सॉन्ग राइटर इरविन बर्लिन का।
1: एक ऐसा नाम जिसने दुनिया को कई टाइमलेस सॉन्ग्स दिए। उनकी कंपोजिशंस आज भी ग्लोबल म्यूजिक कल्चर का हिस्सा मानी जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन में 1500 से भी ज़्यादा सॉन्ग लिखे, मतलब आज के प्लेलिस्ट कल्चर से बहुत पहले ही वो दुनिया की को एंडलेस प्लेलिस्ट दे चुके थे।
0: दोस्तों, अब बात करते हैं उस घटना की जिसने 11 मई को भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। साल था 1998, स्थान राजस्थान का पोखरण, ऊपर शांत रेगिस्तान लेकिन नीचे भारत इतिहास लिखने की तैयारी कर चुका था।
1: और 11 मई 1998 को भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किए जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति, और उसी पल भारत दुनिया की परमाणु शक्तियों में शामिल हो गया।
0: बिल्कुल दोस्तों, उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और इस मिशन में महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही।
1: दोस्तों सोचिए, सीमित रिसोर्सेस, दुनिया का प्रेशर, और फिर भी भारतीय वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, और शायद इसी कॉन्फिडेंस ने भारत को नई पहचान दी।
0: बिल्कुल दोस्तों, और कॉन्फिडेंस की बात हो और मैदान की बात ना हो, तो चलिए अब बात करते हैं कि मैदान चाहे क्रिकेट का हो, शूटिंग रेंज की हो या बॉक्सिंग रिंग का, इस वक्त हर तरफ सिर्फ एक ही चीज़ गूंज रही है, वो है इंडिया ऑन द मूव।
1: तो चलिए बिना टाइम आउट लिए शुरू करते हैं आज का स्पोर्ट्स अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं कल के पहले मैच की। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जाइंट्स को 5 विकेट से हराया। 2003 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने 19.2 ओवर में चेस कर लिया। उर्विल पटेल ने सिर्फ 23 गेंदों में 65 रन की एक्सप्लोसिव पारी खेली।
0: वहीं दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिरी गेंद पर मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। पंड्या ने 73 रन बनाया जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट लेकर मैच पलट दिया।
1: और आज का मुकाबला पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स 7:30 PM धर्मशाला में होगा।
0: अब बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की। भारत 44 साल बाद गुजरात में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप होस्ट कर रहा है। 28 देशों के करीब 180 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और भारत को बिंदिया रानी देवी जैसे खिलाड़ियों से काफ़ी उम्मीदें हैं।
1: शूटिंग में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। नीरू धंधा और विवान कपूर ने ISSF वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता।
0: और बॉक्सिंग में भारत के 6 युवा बॉक्सर एशियन अंडर 15 चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। और स्क्वेश की बात की जाए तो उसमें भारत का अभियान खत्म हो गया है। वीर चोटरानी दूसरे दौर में वर्ल्ड के नंबर 1 मुस्तफ़ा असल से हार गए हैं। फुटबॉल में आज वुमेंस की जो टीम थी उसका बड़ा मुकाबला चाइना से है। अगर भारत इसमें जीत जाता है तो पहली बार मेरिट के आधार पर फीफा वर्ल्ड कप के लिए वो क्वालिफाई करेगा।
1: तो दोस्तों, भारतीय खिलाड़ी हर मैदान में अपना दम दिखा रहे हैं, और याद रखिए, जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी मिनट

0: तक कोशिश करना नहीं छोड़ते। इसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का शेयर बाजार कैसा रहा।
1: बिल्कुल, आज के शेयर बाजार सबसे पहले बात करते हैं BSE की, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 76,015.28 अंकों पर बंद हुआ। और यह जो बाजार था वो नीचे लुढ़का था 1,312.91 अंकों पर। साथ ही साथ NSE यानी कि निफ्टी 50 की भी बात की जाए तो 360.30 अंक नीचे गिरकर यह बाज़ार आज बंद हुआ 23,815.85 अंकों पर। और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की बात करें तो यहां एक डॉलर रहा 95.24 भारतीय रुपया।

0: शब्दों के इत्तेफाक में यूं बदलाव करके देख, तू देख कर ना मुस्कुरा, बस मुस्कुरा कर देख। बिल्कुल इसी के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, औरों को भी खुश रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। यही वादा है आपसे, मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए मैं प्रेरणा,
1: मैं निहल,
0: नमस्कार।

ये था युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। ये आकाशवाणी उदयपुर है। शाम

0: के 6 बजने को हैं। आइए आकाशवाणी दिल्ली से अब हम सुनते हैं हिंदी में समाचार बस कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं बल्कि आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़कर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंक की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप महिला फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सुझाव में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज

0: दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर। इस समय शाम के 6:05 हुए हैं। पेश है प्रोग्राम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम के आरंभ में सांवरिया फिल्म का ये गाना जिसे शान ने गाया है।

आकाशवाणी उदयपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए टक्कर फिल्म का गाना सुनते हैं। अभिजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजें हैं।

टक्कर फिल्म के इस गाने के बाद आइए आपको सुनवाते हैं सूर्यवंशम फिल्म से ये अगला गीत, जिसे कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने गाया है। इस गीत की म्यूजिक कंपोजिंग अनु मलिक की है, आइए सुनते हैं।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं राजू बन गया जेंटलमैन, इस फिल्म का गाना। इस गीत को संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने और गीत को अपनी आवाज दी है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। आइए सुनते हैं राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म का ये गीत।

इन फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने को हैं। आइए आकाशवाणी जयपुर अजमेर से अब हम जुड़ते हैं और सुनते हैं प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक बताया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर राज्य भर के शिवालयों में विशेष आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के राजमार्गों पर बिना रुके वाहनों के टोल काटे जाने की नई प्रणाली का शुभारंभ किया। प्रदेश के युवाओं में विज्ञान और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा। जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर बनेंगे। और राज्य के पश्चिमी जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। सोमनाथ लोगों को याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: राज्य में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में राज्य स्तरीय समारोह रखा गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 75 वर्ष पूर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प से सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ, जो हमारी अजय सांस्कृतिक भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तनोट माता, पुष्कर, खाटू श्याम जी और गलता तीर्थ जैसे आस्था के केंद्रों को विकसित करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
2: राजस्थान के अंदर उस तीर्थ को हम विकसित करना चाहते, लगातार उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जहाँ भी हमारी विरासत है और विरासत को संभालते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं। इस वर्ष भी हमने 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ, नेपाल में 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन से विभिन्न स्थलों पर यात्रा कराई है।
0: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजमार्गों पर बिना रुके वाहनों के टोल काटे जाने की नई प्रणाली का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने आज नई दिल्ली के मुंडका बरक्कलवाला टोल प्लाजा पर इस बैरियर रहित तकनीक की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस उन्नत प्रणाली से टोल प्लाजा पर लगने वाला समय कम होगा और ईंधन की बचत होगी तथा प्रदूषण में काफी कमी आएगी। नई तकनीक के तहत वाहन चालक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टोल कॉरिडोर से गुजर सकेंगे और टोल का भुगतान स्वचालित रूप से कट जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सालाना लगभग 285 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाघ, शेर, चीता जैसी बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। श्री यादव आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के वार्षिक व्यापार शिखर

0: सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री यादव ने बताया कि अगले महीने भारत में पहली और दूसरी तारीख को नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के तहत पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उन्होंने बताया कि बीते 10 वर्षों के भीतर देश में टाइगर रिजर्व्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
1: 10 सालों में हमने टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ा करके 58 कर दी है। हिंदुस्तान के हर जगह पे हमारे पास दुनिया का हर तरह का जंगल है और दुनिया में जो 7 बिग कैट्स है, भारत ही एक ऐसी कंट्री है आउट ऑफ 7 5 बिग कैट्स हमारे यहाँ पर है। हमने दुनिया को कंजर्वेशन का एक ये रास्ता दिखाया है कि हमारे यहाँ से चीता जब एक्सटिंक्ट हुआ तो दुनिया का फर्स्ट वाइल्ड चीता का इंटर कॉन्टिनेंट ट्रांसलोकेशन करने का काम भारत को करने का यह अवसर प्राप्त हुआ।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह नया कानून इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इस योजना पर चालू वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल का भी विशेष प्रावधान किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के युवाओं में विज्ञान और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त के नाम पर ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। वे आज जयपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान श्री शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के विज्ञान क्लबों से जुड़े छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। इससे पहले राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने विज्ञान और तकनीक का उपयोग समृद्ध और स्वस्थ जीवन के लिए करने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने संस्थान से अनाज और सब्जियों में पेस्टिसाइड तथा रसायनों की जांच के लिए आधुनिक उपकरण विकसित करने का आग्रह किया। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील को राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। श्री बैरवा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वैश्विक संकटों के दौरान प्रधानमंत्री ने हमेशा ऐसे दूरदर्शी निर्णय लिए हैं जिनसे देश सुरक्षित रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए नागरिक एकजुट होकर प्रधानमंत्री की इस अपील का समर्थन करें।
2: जब भी ऐसी कोई वैश्विक महामारी हुई हो या वैश्विक समस्या हुई हो तब उन्होंने एक एक स्टेप लिया जिससे कि हमारे देश में कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं आए। जो पेट्रोल डीजल के लिए गैस के लिए और सोना नहीं कर दे, एक उन्होंने कहा है, संदेश दिया है कि अफवाह नहीं करें। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। हम सबको आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि फिजूल खर्ची नहीं करके हम एक आय को हमारी को जिसका अगर हम बचत करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे काम।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत 1 मई से शुरू हुई स्वगणना में पिछले 10 दिन में 6.5 लाख से अधिक परिवारों ने भाग लिया है। इन परिवारों ने इस डिजिटल प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। स्वगणना के मामले में जयपुर जिला अव्वल है। 50,000 से अधिक परिवारों ने स्वगणना पूरी की है। सीकर जिला 32,000 परिवारों की स्वगणना के साथ दूसरे स्थान पर है। गौरतलब है कि स्वगणना की प्रक्रिया 15 मई तक जारी रहेगी। प्रगणक 16 मई से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और मकानों की गणना करेंगे। यह काम 14 जून तक चलेगा। उधर बालोतरा जिले में 100% स्वगणना पूरी करने वाले प्रगणकों और सुपरवाइजरों को आज जिला कलेक्टर ने सम्मानित किया। भीलवाड़ा की रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क में उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों के लिए रीको ने भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू की।

0: है। इसके तहत 1500 से लेकर 36,000 वर्ग मीटर तक के औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान अभियान के तहत राज्य सरकार के साथ एमओयू करने वाले निवेशक रीको के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आगामी 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। रीको ने इस पार्क में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 221 करोड़ रुपए विकसित किए हैं। राज्य के पश्चिमी जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर के कई हिस्सों में आज लू से जनजीवन प्रभावित रहा। कुछ स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। दिन के साथ साथ रातें भी इन दिनों तप रही है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। राज्य में सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं फलोदी में तापमान 46.8 तथा जैसलमेर में 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला अगले 4-5 दिन बना रहेगा। जोधपुर और बीकानेर संभाग में इस दौरान लू का दौर जारी रहने की संभावना है। उधर अगले 48 घंटों में बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग तथा शेखावाटी अंचल में कहीं कहीं तेज आंधी के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा मार्ग पर आज तड़के एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। वंडर चौराहे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से हुए इस हादसे में इन युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये युवक मजदूरी कर वापस घर लौट रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक बताया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर राज्य भर के शिवालयों में विशेष आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के राजमार्गों पर बिना रुके वाहनों के टोल काटे जाने की नई प्रणाली का शुभारंभ किया। प्रदेश के युवाओं में विज्ञान और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा। जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर बनेंगे। और राज्य के पश्चिमी जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बंशीलाल ने तैयार किया है। बालोतरा रिफाइनरी में जुलाई महीने से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इस महीने के दूसरे पखवाड़े से यूनिट की कमीशनिंग का काम शुरू हो जाएगा। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित करने वाले थे, किंतु उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले यूनिट में आग लगने की घटना के बाद ये कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। रिफाइनरी से जिले की तकदीर और तस्वीर बदल रही है। इससे बालोतरा प्रदेश का तेजी से आगे बढ़ता जिला बन चुका है। तेजी से हो रहे विकास की कड़ी में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, पचपदरा बालोतरा में लग्जरी होटल्स और कई नई कॉलोनियां विकसित हुई हैं। साथ ही रेलवे की ओर से बालोतरा से रिफाइनरी तक नई रेल लाइन के सर्वे का काम किया जा रहा है। वहीं कई लंबी दूरी की रेलगाड़ियां भी बालोतरा बाड़मेर तक पहुंच रही हैं। दूसरी तरफ रीको ने रिफाइनरी से निकलने वाले बाई प्रोडक्ट के उद्योगों के लिए जमीन आरक्षित की है। बोरावास कलावा में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करते हुए पहले चरण में भूखंडों की नीलामी भी की जा चुकी है। वहीं ये स्थान पेट्रोकेमिकल्स हब बनने की ओर तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। बालोतरा रिफाइनरी क्षेत्र को औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में पिछले दिनों महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें स्थानीय उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और रीको के अधिकारियों ने औद्योगिक विकास की संभावनाओं और निवेश को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि रिफाइनरी परियोजना के शुरू होने के बाद बालोतरा और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की अपार संभावना बनी है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत बन रहा है। बैठक के दौरान राजस्थान पेट्रो जोन की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि रिफाइनरी के पास बोरावास कालावा, सिंधियों की ढाणी, वेदरलाई, मालियों की ढाणी, थोब और जीरला क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योगों के लिए औद्योगिक भूखंड

उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ग्राम रथ अभियान के जरिए जिले के गांवों ढाणियों के लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। 27 अप्रैल से शुरू हुआ ये अभियान 15 मई तक चलेगा। ग्राम रथों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 13 विभागों की सरकारी योजनाओं, खासतौर पर कृषि से संबंधित योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। कृषि के अलावा उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, सिंचाई, राजस्व, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग शामिल है। रथ पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। हर रथ में एक सुझाव पेटिका है। इसमें ग्रामीण अपनी समस्याएं और सुझाव प्रशासन तक सीधे पहुंचा रहे हैं। रथ में पहली बार कलाकार भी शामिल किए गए हैं, जो रथ के साथ गांव-गांव जाकर लोकगीतों और नाटकों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। जिले की सिवाना, पचपदरा और बायतू विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में ये रथ पहुंच रहे हैं। वहीं बड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर रात्रि चौपाल भी आयोजित हो रही है, जिसमें स्थानीय विधायक, जिला कलेक्टर और जिला स्तरीय अधिकारी पहुंचकर आमजन की परिवेदनाएं सुन रहे हैं।

0: सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज रखी गई है। अभियान के तहत जागरूकता गतिविधियों के साथ आपातकालीन सेवाओं को प्रभावी बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। वहीं बालोतरा जिला अस्पताल में अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसके साथ ही बालोतरा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मिंदर ने आस्था दिव्यता और देश श्री आत्मारी निशानी बतायो। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रे मौके प्रदेश में आई खास आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश में आए हाईवे माथे बिना रुकिया गाड़िया रा टोल काटण रा नुआ सिस्टम री शुरुआत कीनी। राज्य रा नौजवाना माए विज्ञान और तकनीकी कौशल बधावण सारू ब्रह्म गुप्त पुरस्कार शुरू करण रो ऐलान। जयपुर रा कोचिंग हब माए इनोवेशन सेंटर बनायो चावेला। और प्रदेश रा आतुणी हल्का माए जबरदस्त गर्मी और लू। जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा और जोधपुर रा कई हलका माए जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। गुजरात रा सोमनाथ मंदिर ने उजू बनावण रा 75 साल पूरा भेवण रा मौके आखा देश माए आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाई चियो। ई मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर माए पूजा अर्चना कीनी। गुजरात माए राखी ज्या सोमनाथ अमृत महोत्सव माए श्री मोदी कह्यो के सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था दिव्यता और देश री आत्मा री निशानी है। वह कहो कि सोमनाथ लोगों ने याद दिलावे है कि जड़ाऊ जुड़ियो रहवण री सूरत में ही कोई देश लंबा भगत ताई मजबूती चाल सके है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रे मौके राज्य स्तर रो कार्यक्रम जयपुर रा झारखंड महादेव मंदिर माए राखी चियो। इन माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो के 75 साल पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल रा संकल्प ओ सोमनाथ मंदिर ने ओजो सुधारी जियो जो माणी बेहतरीन सांस्कृतिक भावना रो दर्शाव करे है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री विकास और विरासत री सोच री सराहना करता थका कहो के देश भर माए अयोध्या काशी और उज्जैन सरीखी धार्मिक ठोड़ा रो कायाकल्प करियो जा रियो है। और राज्य सरकार ही तनोट माता पुष्कर खाटू श्याम जी और गलता तीर्थ सरीखा आस्थारा केंद्रा ने विकसित करण सारू लगातार काम कर रही है।
3: राजस्थान के अंदर उस तीर्थ को हम विकसित करना चाहते हैं, लगातार उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि जहाँ भी हमारी विरासत है और विरासत को संभालते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं। इस वर्ष भी हमने 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ नेपाल में 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन से विभिन्न स्थलों पर यात्रा कराई है।
1: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कहो है कि मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम सागे देश में हाईवे मैनेजमेंट रो नुओ दौर शुरू हुयो है। वे आज नई दिल्ली रा मुंडका बकरवाला टोल प्लाजा में है बिना बैरियर वाली तकनीक री शुरुआत कीनी। श्री गडकरी कहो कि ई तकनीक गाड़ियां टोल कॉरिडोर 100 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार निकल सकेला और टोल रो चुकारो आपू आप वह जावेला। वे कहो कि ई व्यवस्थाओं हर साल करीब 285 करोड़ रुपया रो तेल बचेला। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव कहो है कि बाघ शेर और चीता सरीखा मोटा जिनावरा ने बचावण सारू कारोबारियां का न्यू रकम देवणो घणो जरूरी है। वह आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिषद

0: संघ सीआईआई रा सालाना व्यापार शिखर सम्मेलन में बोल रहा है। श्री यादव कहो कि पहलो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन 1 और 2 जून ने नई दिल्ली में रखो जावेला। वे बतायो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाला राज रा 10 साल में देश में टाइगर रिजर्व री तादाद में बढ़ोतरी हुई है।
1: 10 सालों में हमने टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ा करके 58 कर दी है। हिंदुस्तान के हर जगह पे हमारे पास दुनिया का हर तरह का जंगल है और दुनिया में जो 7 बिग कैट्स है, भारत ही एक ऐसी कंट्री है आउट ऑफ 7, 5 बिग कैट्स हमारे यहाँ पर है। हमने दुनिया को कंजर्वेशन का एक ये रास्ता दिखाया है कि हमारे यहाँ से चीता जब एक्सटिंक्ट हुआ तो दुनिया का फर्स्ट वाइल्ड चीता का इंटर कॉन्टिनेंट ट्रांसलोकेशन करने का काम भारत को करने का यह अवसर प्राप्त हुआ।
0: केंद्र सरकार विकसित भारत जी राम जी रोजगार और आजीविका मिशन कानून लागू विवरण री अधिसूचना जारी कर दीनी है। इन पाछे ओ कानून 1 जुलाई आखा देश में लागू भेजावेला। इन तेत गावाई हलका में साल में 125 दिन री मजूरी री गारंटी दी जावेला। ग्रामीण विकास मंत्रालय रे मुजब ई मद में चालू माली साल में 95,692 करोड़ रुपया रखी गया है। इस आगे महिला मजूरों की भागीदारी बढ़ावन सारू कमठाणा माथे बच्चों की देखभाल रा खास प्रावधान करी गया है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश रा नौजवाना माय विज्ञान और तकनीकी कौशल ने बधाओ देवन सारू महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त रा नाम पर ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करियो चावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस रे मौके जयपुर में राखी जिया राज्य स्तर रा जलसा माय ओ ऐलान कीनो। वे कहो कि जयपुर रा कोचिंग हब माय इनोवेशन सेंटर खोलियो जावेला। कार्यक्रम रे दौरान श्री शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए प्रदेश भर रा विज्ञान क्लबों जुड़िया विद्यार्थियों सागे बातचीत कीनी। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ही विज्ञान और तकनीक ने समृद्ध और स्वस्थ जीवन सारू काम लेवन बाबत कहो है। वे आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस रे मौके जयपुर रा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी का नींव राखी जा कार्यक्रम में बोल रहा है। श्री बागड़े इन संस्थान अनाज और तरकारियां ने बचावन सारू काम ली जावन वाली कीड़ा मारन री दवाइयां और रसायना री जांच सारू नुआ उपकरण विकसित करने बाबत कहो। वे कहो कि मौजूदा दौर में खान पीन री चीजा में जहरीली चीजा री मौजूदगी री जांच घनी मोटी जरूरत है। इस मौके राज्यपाल राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2026 री स्मारिका और पोस्टर रो विमोचन कीनो। चालू माली साल 2026-27 माय देश री माली व्यवस्था माय 6.6% री बढ़ोतरी रा आसार है। भारतीय स्टेट बैंक कानियों आज जारी रिपोर्ट रे मुजब लाडला माली साल री चौथी तिमाही माय असली सकल घरेलू उत्पाद GDP माय बढ़ोतरी रो अनुमान करीब 7.2% लकाइचियो हो। इन बीच उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री साधना ने बुद्धियों काम लेवन और बचत री अरज ने देश ने माली तौर मजबूत बनावन री दिशा में मोटो जतन बतायो है। श्री बैरवा कहो कि दुनिया रा मौजूदा हालात न ध्यान रखता थका विदेशी मुद्रा भंडार न बचावन सारू जनता ने प्रधानमंत्री री अरज माननी चाहिए।
2: जब भी ऐसी कोई वैश्विक महामारी हुई हो या वैश्विक समस्या हुई हो तब उन्होंने एक एक स्टेप लिया जिससे कि हमारे देश में कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं आए। जो पेट्रोल डीजल के लिए गैस के लिए और सोना नहीं करते, एक उन्होंने कहा है, संदेश दिया है कि अफवाह नहीं करें, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। हम सबको आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि फिजूल खर्ची नहीं करके हम एक आय को हमारी को जिसका अगर हम बचत करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे काम।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 रातेत 1 मई चल रहा जनगणना रा पहला दौर रातेत करी जी स्वगणना में लाडला 10 दिन में 6.5 लाख बत्ता परिवार शामिल भैर डिजिटल प्रक्रिया पूरी कर लीनी है। स्वगणना रा मामला में अव्वल जयपुर जिला में 50,000 बत्ता परिवार स्वगणना पूरी कर लीनी है। सीकर जिलो 32,000 परिवार री स्वगणना सागे दूजा नंबर माथे है। ध्यान योग है कि स्वगणना रो काम 15 मई तक चलेला।

0: 16 मई 14 जून ताई प्रगणक घर घर जार मकाना री गिनती करेला। ई बीचे बालोतरा जिला में सगला घरां में स्वगणना पूरी करावण वाला प्रगणका और सुपरवाइजरां रो आज जिला कलेक्टर मान कीनो। भीलवाड़ा रा रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क में कारखाना लगावण वाला सारू रिकोरी ओर प्लॉट देवण री प्रक्रिया शुरू करी ची है। इना तेत 2,500-36,000 वर्ग मीटर ताई रा प्लॉट मुहैया कराया जावेला। राइजिंग राजस्थान अभियान रा तेत राज्य सरकार सागे करार करण वाला निवेशक रिकोरा ऑनलाइन पोर्टल रे जरिए 14 मई ताई अर्जी दे सके है। ई पार्क माए बुनियादी सुविधा विकसित करण सारू करीब 221 करोड़ रुपया मंजूर करी चिया है। रबे मौसम राज्य रा आतुणी हलका माए घनी जोरदार गर्मी बीच लू बाज रही है। जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा और जोधपुर रा कई हलका माए आज लू बाजण जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो। बाड़मेर माए 47.3, फलौदी माए 46.8, जैसलमेर माए 46.5 और बीकानेर माए 45.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करीचियो। कई थोड़ा रात्रि बगती तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ऊंचो दर्ज करीचियो। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब दिन और रात्रि बगत तापमान माए बढ़ोतरी आवता 4-5 दिन ताई चालती रेवन रा आसार है। इन दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग माए लू बाजती रेवन री शंका है। इन बीचे आवता 48 घंटा माए बीकानेर जयपुर और भरतपुर संभाग और शेखावाटी हल्का माए कठा कठा तेज आंधी सागर छाटो छिड़को वेवन री संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिला माए निम्बाहेड़ा गेला माथे वंडर चौराहा कन्ने आज तड़के अनजान गाड़ी री फेंट माए आ जावण 3 जना री मौके ही मौत वेकी। ए लोग मजूरी कर पाछा घरां जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-11-7800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार दिया जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक और फेरू सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ने आस्था दिव्यता और देश री आत्मा री निशानी बतायो। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रे मौके प्रदेश में आई खास आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश में हाईवे माथे बिना रुकियां गाड़ियां रा टोल काटन रा नुआ सिस्टम री शुरुआत कीनी। राज्य रा नौजवाना माए विज्ञान और तकनीकी कौशल बधावन सारू ब्रह्म गुप्त पुरस्कार शुरू करण रो ऐलान। और प्रदेश रा आतुणी हल्का माए जबरदस्त गर्मी और लू। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। हमारे ग्रामीण परिवार अब सुनेंगे कार्यक्रम खेती और घर, जिसमें होगी चौपाल रिवाद। जानकारी के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना की भी हम बात करेंगे, साथ ही अन्य उपयोगी बातचीत के साथ आप आनंद लीजिएगा राजस्थानी लोकगीतों का।

0: राम राम रामा भाई, राम राम।
1: राम राम रेखा भाई सा, राम राम।
0: खेती और घर कार्यक्रम होने वाला सगला किसान भाई बहना ने भी अपनो राम राम सा। देखो सा कार्यक्रम रो टाइम व्यो और आपा सगला किसान भाई बहना रे वास्ते चौपाल री बात में कई न कई जानकारियां भी लावा, बातचीत भी करा। तो क्यों नहीं आज आप ही सगला किसान भाई बहनों बात करा कि जो कृषि उपकरण और रख रखाव है वो आप ही किस तरह कर सका सा।
1: बिल्कुल सही बात है सा। देखो कही एक आप सब जाना खेती बाड़ी रो जो आधुनिक रूप व्यो है, आप देखो अना उपकरण रे आवा हूँ, आप देखो कि बहुत जल्दी काम भी रो है, अच्छो काम भी रो है। और लेकिन कही अणी मैंने एक चीज़ यह है कि अनारो टेम

0: तथा गाना रो उपयोग लिदा केड़े के गाना रो हार हमार करने आना रखना भी पड़े और उपयोग लेता टाइम भी आना रो पूरी तरह ध्यान रखना पड़े के।
1: बिल्कुल हाँची बात है सा। देखो सा जटे अगर आप ही कोई भी औजार है कोई भी उपकरण है अगर काम में ले रहा तो अगर वंडा अच्छी तरह आप ही रख रखाव रखांगा तो आप ही कही सका पाछी जरूरत पड़वा पे आप ही वना ने काम में ले सका सा। देखो सा नियमित सफाई री आप ही बात करा तो मिट्टी और कचरो आपने अना जो उपकरण आप ही काम में ले रहा वना ने हटाणो है काम खत्म व्यवहार बाद में कल्टीवेटर या रोटावेटर मिट्टी और फसल रा जतरा भी अवशेष बचा तका वेवे विने तुरंत ही आपने साफ करना है और नमी वाली मिट्टी जो वेवे व धातु में जंग पैदा करे यो भी आपने ध्यान रखना है सा।
0: बढ़िया बात है सा। और अंडे अलावा कई धुलाई री बात करें तो टेम टेम पे कई उपकरण ने पानी धोना चाहे और ध्यान यो रखना कि बेरिंग या इलेक्ट्रिकल हिस्सा में पानी नहीं जावे। अब दूसरी बात यह है कि लुब्रिकेशन और ग्रेसिंग यानी कि घर्षण कम करे और रोटावेटर थ्रेसर और बुवाई मशीनर वाते गतिशील हिस्सा में नियमित रूप में आपने कही है कि ऑयल पानी लगाना चाहे सा।
1: बिल्कुल सा। और अगर आखी ट्रैक्टर या पावर टिलर या इंजन ऑयल गियर ऑयल हाइड्रोलिक ऑयल स्तर ने समय समय पे आप चेक करा और जदी जदी भी आपने जरूरत महसूस वे वदी जरूर बदलता रहना है ऐसा।
0: अंडे लाल लारे देखो एक बात रो और ध्यान रखना कि भाई जंग बचाव करना है क्योंकि देखो पेंट और कोटिंग यदि उपकरण रो पेंट उतर गयो है तो बटे नयो पेंट और एंटी रस्ट कोटिंग कर लेनी टेम रहता था का। अंडे अलावा कहीं तेल री परत यानी कि यदि अपन काम नहीं है और मशीन पड़ी थी ये तो विने ऑफ सीजन में यदि उपकरण उपयोग में नहीं है तो लोहारे हिसाब से पुरानो कालो तेल या ग्रीस लगे रखना ताकि हवारी नमियों जंग नहीं लगे।
1: बिल्कुल सा। तेज धार वाला हिस्सा री अगर अपनी बात करा तो ब्लेड और फाला वेवे विने रोटावेटर या ब्लेड है कल्टीवेटर या फाला ने कटाई री मशीन रे दांत री धार आपने चेक करता रहना है और धार कम वेवा पे पाछा आपने ट्रैक्टर पे ज़्यादा जोर भी पड़े यो भी ध्यान रखना है और ईंधन री खपत भी बढ़ जावे सा।
0: बिल्कुल सही बात है सा। देखो आप आना कृषि उपकरण रे रख रखाव री और भी बात करूँगा लेकिन आपको रेखा भाई सा तो एक अच्छो सो मनोरंजन रे बातें रास्ता नहीं की थोड़ा।
1: हाँ सर।

0: तो देखो सा, यो तो हुने आप ही मन भावना स्थानी गीत और अब आपने कार्यक्रम ने और आगे बढ़ावा और बात करा आप ही न्यूनतम समर्थन मूल्य री। देखो सा भेरा भाई आप ही बात करें भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य जिन्हें आप ही MSP भी कहवा और भारत सरकार द्वारा जो कृषि उत्पाद वे वंडे वास्ते तय कियो गयो यो एक गारंटीकृत मूल्य है। यो किसान ने फसल की कीमत में बेवा वाली अत्यधिक गिरावटी सुरक्षा भी प्रदान करे और अटे MSP रे मुख्य पहलू ने जो भाषा वे विने भी आप ही अच्छी तरह समझ सका कि अंडो जो उद्देश्य है वो कई हिस्सा।
1: बिल्कुल सर, देखो बाजार की बात करें तो अनिश्चित सुरक्षा यानी कि बाजार में अगर फसल री बम्पर पैदावार के कारण कीमत बहुत ज़्यादा गिर गई है तो आप देखो सरकार एक तय की दी थी कि MSP पे फसल खरीदेगा ताकि किसान भाई बहनों ने नुकसान बिल्कुल नहीं हुए। अंडरलाल अगर आप बात बताऊँगा तो निवेश ने प्रोत्साहन है एक निश्चित आय रो आश्वासन मिलवाने बाद किसान खेती में नई तकनीक अच्छा बीज लगावे बातें प्रोत्साहित वे वैसा।
0: बिल्कुल सा, जटे MSP री बात कर रहे आप न्यूनतम समर्थन मूल्य री अगर अंडे निर्धारण भी आप बात करा तो जो भारत सरकार और कृषि लागत और मूल्य आयोग है वे विभिन्न कार्यकारी आधार पर MSP री सिफारिश भी करे और अंतिम निर्णय जो प्रधानमंत्री री अध्यक्षता वाली जो आर्थिक मामला री कैबिनेट समिति वे भी ले वे सा।
1: बिल्कुल सही बात है सा, अंडे लाल ला रहे देखो कही एक कीमत तय करता वक्त कई कुछ वातारों भी ध्यान रखे वहीं मैंने खेती री लागत वेगी, खेती री लागत मैंने आपने बतावा कि बीज वेगी, खाद वेगी, सिंचाई वेगी, मजदूरी वेगी। अंडे लाला रे देखो बाजार में फसल री मांग और आपूर्ति री स्थिति री भी बात देखे। अंडे अलावा कही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतारों रुक कही है। अंडे अलावा कही देखो जो अब दूसरी बात बतावा कि भाई कवर की दी जाओ वाली फसलां कसी है वर्तमान में।
0: देखो सा अणी में अगर आप ही बात करा तो सरकारी तरफ वो घनी सारी फसला है जो कि अनिवार्य फसला रे अंतर्गत आवे जिन्हें की आप ही बात करा तो अनाज रे अंदर धान गेहूं मक्का बाजरा ज्वार रागी और जो है सा। दाल भी अगर आप ही बात करा तो चना अरहर मूंग उड़द और मसूर है सा।

0: आपकी बात करा तो मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और नाइजर सीडे व्यावसायिक फसल। अगर आपकी बात करा तो कपास, कच्चा जूट, खोपरा और कच्चो नारियल भी अणि में आवे सा।
1: बिल्कुल। अब लागत री गणना री बात करें तो एमएसपी ने लेन अक्सर आप देखो कि स्वामीनाथन आयोग री सिफारिश सारी चर्चा हुए भी, यानी कि लागत गणना वाला कुछ अलग अलग तरीका है। अणि मैंने कई बीज, खाद, ईंधन, सिंचाई पे वाला नकद खर्च, अंडे अलावा कई नकद खर्च रे लारे परिवार सदस्य री मेहनत, मजदूरी, अनुमानित मूल्य, अंडे लाल लारे जमीन रो किरायो, खेती में लगी पूंजी, ब्याज भी शामिल कितो जावे सा।
0: बिल्कुल सा अनि प्रकार अगर आप सरकारी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यो निर्धारित व्यवसाय और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी अगर सरकार निर्धारित करे तो अपना सगला किसाना ने भी फायदो वैसा। तो जेटे फायदा री बात कर रहे हाँ तो क्यों नहीं अपना किसान भाई बहना ने भी लारे लारे मनोरंजन भी करावा और एक राजस्थानी गीत और सुनाई दसा।
1: बिल्कुल सर।

0: तो देखो मेरा वही हो, तुम हो मन भावन राजस्थानी गीत। और अबे आपने कार्यक्रम ने और आगे बढ़ावा और सगला किसान भाई बहनों आप जानकारी करावा जो कृषि में AI रो लाभ है वे वो आपने सबने किस तरह मिल रहे हो ऐसा।
1: बिल्कुल सा देखो अंड AI रा घना हारा फायदा आणि मैंने देखो सटीक भविष्यवाणी और मौसम रो अच्छो विश्लेषण यानी कि आप देखो AI आधारित एप्स और उपकरण उपग्रह डेटा रो विश्लेषण करने आपने मौसम री सटीक जानकारी देवे। वणी मैंने आप देखो बुवाई रो टेम कही है। AI यो तक वती देगा कि मिट्टी री नमी और तापमान रे आधार पे बीज बोवा रो सब अच्छो समय कशो है सा।
0: बिल्कुल सा, अगर जोखिम प्रबंधन री भी आप ही बात करा तो अचानक वे वाला बारिश या पछे ओलावृष्टि री जो भविष्यवाणी फसल बचावा में भी आपने अणी AI रे माध्यम जानकारी मिले सा। और देखो सा वंडे लारे लारे अगर आप ही कीट और रोग री पहचान भी करनी है तो अबे सगला किसान भाई बहन अपने स्मार्टफोन अगर फसल की तस्वीर खींचने भी रोगों रो पतो लगाई सके सा। सटीक निदान भी आपने AI इमेज रिकग्निशन रे अंदर आपने मिल जावे ताकि आपने वन्य तुरंत पहचान ने भी फसल में कणी प्रकारों कोई कीट लागो है कोई फफूंद लागो है तो वंडो भी पतो आपने मल जावे सा।
1: बहुत बढ़िया बात बताई सा। और आनी मैंने देखो दवारों सही छिटकाव या भी जानकारी AI रे माध्यम अपने मिल जावे कि आप देखो प्रभावित हिस्सा पे कीटनाशक छिड़कवर सही सलाह देवे जेणियो आप देखो खर्चो कम वेवे और पर्यावरण ने नुकसान भी बहुत कम वेवे। अब देखो दूसरी बात यह है कि मिट्टी और पोषक तत्व प्रबंधन री बात करा तो AI सेंसर मिट्टी की गुणवत्ता री जांच करे और आपने अच्छी तरह यो बात बताते खेत ने कई प्रकार रे खा

0: सारी कतार में भी खड़ो कर दी दो गए सर।
1: बिल्कुल सा देखो और बात करा आपी हंसा तीन रो परीक्षण डी भी तो अणिदन भारत रे पहला जो स्वदेशी विमान हंसा तीन ने बेंगलुरु में अपनी पहली उड़ान भरी ही और अणि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने जो NAL द्वारा विकसित भी कियो गयो हो सा।
0: त्रिशूल मिसाइल रो जो सफल परीक्षण हो वो ही अणिदनी सीधी हो। आप देखो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन रे कम दूरी री जो सतह में हवा में मारवा करवा वाली त्रिशूल मिसाइल रो सफल परीक्षण भी अणिदनी सीधी हो सर।
1: देखो सर शुरुआत और घोषणा री अपनी बात करा तो अणि टेम आपने तत्कालीन जो प्रधानमंत्री है और भारत रे अणा तकनीकी उपलब्धियां ने देखता तका सन 1999 में हर साल 11 महीने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस रे रूप में मनावारी घोषणा की दी सा।
0: बिल्कुल सही बात है सर। तो कुल मिलाकर उद्देश्य यो है कि वैज्ञानिक इंजीनियर और शोधकर्ता रे योगदान ने सम्मानित करनो, देश रे युवा ने विज्ञान और तकनीक रे क्षेत्र में ने कैरियर बनावर वास्ते प्रेरित करनो और भारत ने आत्मनिर्भरता रे और मेक इन इंडिया जैसे पहलू ने बढ़ावो देनो है सर।
1: बिल्कुल सा देखो पुरस्कार और सम्मान री भी आपी बात करा तो अणि अवसर पे नई दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम भी आयोजित कियो जावे जटे भारत रा राष्ट्रपति वणा वैज्ञानिक और वणा जुड़िया तका जतरा भी संस्थान है वणा ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्रदान करे जटे की हमेशा तकनीकी नवाचार और जो व्यवसायीकरण में उत्कृष्ट जो कार्य वेवे वटे वंडो सम्मान भी वेवे और महत्वरी अगर आप बात करना तो आज रे परिप्रेक्ष्य में आज रो यो दन केवल परमाणु शक्ति रो ही नहीं बल्कि कृषि में ड्रोन तकनीक रो अंतरिक्ष में चंद्रयान और डिजिटल इंडिया जैसा जो आधुनिक तकनीकी बदलाव है वनडे जश्न मनावारो अवसर भी है सा।
0: बिल्कुल सही बात है सर। तो कुल मिलाकर आज रो दिन जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है और यो दिन अपने हर देशवासी रे जीवन में ने बहुत महत्व रखे सर। और अबे आपको तो एक अच्छो सो प्यारो राजस्थानी लोकगीत और हुणावा सा।
1: हाँ सर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

तो देखो बेरा भाई, यो तो हुने आप ही मनभाव राजस्थानी गीत और लार लारे संदेशा भी हुने सा। और अबे आप ही बात करा कि देखो अबारो खूब गर्मी पड़ रही है सा। और देखो जटे अपने स्वास्थ्य री भी अगर आप ही बात करा तो खावा पिया में भी

0: आपने ज़्यादा से ज़्यादा विषय के जत्रे पेय पदार्थ शामिल करना है, और जो गरिष्ठ भोजन है विने आपने कम खाणो। ऐसा जत्रो आपी पेय पदार्थ अगर आपने भोजन में शामिल करांगा तो आपने शरीर में भी नमी बनी रह गया, और जो यह गर्मी पड़ रही है अणु भी आपने निरंतर बचा वेगा सा।
1: बिल्कुल सही बात है सा। खाओ पियो ला रहे कही देखो कही है कि आपने यानी गर्मी में ने बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। आप अगर कटे जाइरा हो और तावड़ा में जाइरा हो तो पूरा कपड़ा पहनो, कोशिश करो कि आप यानी धूप में बचो, क्योंकि आप देख लो दनरो अशो तावड़ो है कि वो आपने बीमार कर सके। छोटा बच्चा रहो बुजुर्ग रहो विशेष रूप से ध्यान रखना। छोटा बच्चा ने ORS घोल वेग्यो नींबू पानी है तरल पदार्थ जाना बुनो आप बात बताई खाओ पियो विशेष रूप ध्यान रखना। और अति आवश्यक काम नहीं हुए तो दन ने अटी उठी तावड़ा में दौड़वारी ज़्यादा जरूरत नहीं है ऐसा।
0: बिल्कुल सा, अगर आप ही वनी टाइम ने टाड़ ने अगर काम करांगा तो आपका शरीर हाउ बने रहेगा सा। और देखो सा चलता चलता आपको तो एक राजस्थानी गीत और होना ही था सा।
1: बिल्कुल होना सा।

हमारे ग्रामीण परिवार अभी सुन रहे थे कार्यक्रम खेती और घर। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत।

अंदाज फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना, मधुर आवाज कुमार सानू की थी। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में अनुराधा पौडवाल की आवाज में जंगल लव, इस फिल्म का ये गाना।

सड़क फिल्म के इस नगमे के बाद आइए हम आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये अगला गीत, जिसे हमने चुना है फिल्म दिल है कि मानता नहीं।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: आइए हंगामा फिल्म से सुनते हैं शान और साधना सरगम की आवाज में ये गाना।

यारा दिलदारा। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से। आइए अब इस कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं बाजीगर फिल्म से अलका याग्निक और विनोद राठौड़ को। इस गीत का संगीत निर्देशन किया है अनु मलिक ने।

0: बाजीगर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से और सुनते हैं समाचार संध्या और रात 9 न्यूज एट 9।
1: मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है।

0: वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां

0: अतीत का उत्सव नहीं है बल्कि ये लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है, विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
2: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
2: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
3: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री सरमा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रूपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है।

0: भारत एक अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases.
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की

आकाशवाणी उदयपुर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गाई हुई गजलें। सुनते हैं कार्यक्रम की ये अंतिम पेशकश।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें,
2: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
3: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं महालक्ष्मी शेनॉय का गायन। आप प्रस्तुत कर रही हैं राग मरुबिहाग। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे हैं ओम कुमावत। आइए सुनते हैं महालक्ष्मी शेनॉय का गायन।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे महालक्ष्मी शेनोय का गायन, आप प्रस्तुत कर रही थी राग मरुबिहाग। आइए अब हम सुनते हैं पंडित निखिल बनर्जी का सितार वादन राग मालकोंस में। तबले पर संगत कर रहे हैं श्री समीर चटर्जी।

आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर की दिलकश आवाज़ में कर्तव्य फिल्म का ये नगमा अभी आपने सुना। इस गीत को संगीतबद्ध किया था खय्याम ने। फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में चंबल की कसम। इस फिल्म से ये तराना।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में इज्जत फिल्म का गीत अभी आपने सुना। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की मिलीजुली आवाज़ों में शोर फिल्म का ये नगमा, जिसका संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

टूटे खिलौने इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना यशुदास की आवाज में। फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब बारी है अगले गाने की। आइए अब हम आपको सुनवाएं तोहफा फिल्म का गाना, जिसे लता मंगेशकर के साथ सुरेश वाडकर ने गाया है। राजेश रोशन का संगीत है, आइए सुनते हैं ये नगमा।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहू बेगम, इस फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। कार्यक्रम से चलते चलते आपको सुनवाते हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में निकाह फिल्म का ये गीत।
1: अलविदा मत कहो।

0: निकाह फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार।
1: साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्रीय को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप

के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।